103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी एफएम शिमला है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के लिए आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित

0: अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइल्स थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santali Jahera and Ho Jahera Skill Centre and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former head of India's FATF delegation and former director of FIUIND will help advance the FATF's mandate of safeguarding financial integrity. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar has

ये है आकाशवाणी FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। भक्ति रस कार्यक्रम हिमांजलि प्रस्तुत है।

भक्ति, विश्वास और आत्मीयता के धागों से बुनी सुबह की पहली किरण आपकी आत्मा को प्रभु के प्रेम से सराबोर कर दे। इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम हिमांजलि का आरंभ करते हैं प्रथम पूज्य गौरी पुत्र गणेश के वंदन के साथ।

ईश्वर कहीं दूर नहीं, हमारे इसी गहरे भाव में बसे हैं। जब श्रद्धा सच्ची हो तो हर भजन एक प्रार्थना बन जाता है। इन्हीं भजनों के पुष्प हम प्रभु चरणों में अर्पण कर रहे हैं।

श्रद्धा की महक और सुरों के ये सुंदर थाल सजाकर हम अपनी हर सांस उस परमात्मा के नाम कर रहे हैं, जहां न कोई चिंता है न कोई शोर, बस आत्मा का परमात्मा से एक अटूट और पवित्र मिलन।

श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध प्रेम से भरी ये भक्तिमय प्रभात आपके जीवन को दिव्य ऊर्जा और परम आनंद से सराबोर कर दे। इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम हिमांजलि यहीं संपन्न करते हैं।

आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे भजनों की हिमांजलि, राम के चरित्र का पवित्र मानसरोवर मानस गान। आइए अब सुनते हैं।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा?

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत मानस गान, गायक कलाकार लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी FM शिमला। अब आप सुनेंगे देशगान।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला आपने ट्यून इन किया है। अब वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से अब तक लगभग 70 लाख रोजगार सृजित हुए हैं और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा कवच मिला है। इधर शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण हुआ। इस मौके पर प्रदेश के 6,099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने मल्टी फैकल्टी भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सीबीटी लैब का लोकार्पण भी किया। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के बगैण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और राजकीय प्राथमिक स्कूल के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया है और पहले चरण में राज्य के 151 स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनावों को टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 12 जिलों में से 10 में भाजपा अपने जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हार के डर से इनके चुनाव नहीं करवा रही है। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कल 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपनी साधारण बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि अपने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और उसके बाद घर लौटने के लिए परीक्षार्थी निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये रियायत 20 जून से 22 जून तक मान्य रहेगी। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये है एफएम शिमला।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर

0: डेढ़ बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। सुबह के 7:05 हुए हैं, अब आप सुनेंगे चिंतन।

एक साधारण ब्राह्मण थे। वे काशी पढ़कर आए, सिर पर पुस्तकें लदी हुई थीं। शहर से होकर निकले तो वर्षा आ गई। पास में छाता था नहीं, अतः एक मकान के दरवाजे के पास जगह देखकर खड़े हो गए। उसके ऊपर एक स्त्री रहती थी। कुछ आदमी राम नाम सत्य है कहते हुए एक मुर्दे को लेकर वहां से निकले तो उस स्त्री ने अपनी बेटी को आवाज देकर कहा कि जा पता लगाकर आ, ये स्वर्ग में गया है या नरक में गया। लड़की चली गई। पंडित जी ने सुना तो वही ठहर गई कि ये कौन सी विद्या है जिससे मरने वाले का पता लग जाए कि वो कहां गया। थोड़ी देर में वो लड़की आई और माता से बोली कि ये तो नरक में गया। इतने में दूसरा मुर्दा वहां आया और उस स्त्री ने फिर से लड़की को भेज दिया। लड़की ने आकर कहा कि ये तो स्वर्ग में गया। पंडित जी ने विचार किया कि मैं इतने वर्ष काशी में रहा, वहां कितनी ही पुस्तकें पढ़ी, पर यह पता नहीं लगता कि मरने वाला कहां गया। ये विद्या तो मुझे सीखनी चाहिए। पंडित जी मकान के ऊपर चले गए और उस स्त्री से आग्रहपूर्वक कहने लगे, आपने लड़की से कहा कि पता लगा कर आओ मरने वाला कहां गया। तो उसने कहा कि एक नरक में गया और एक स्वर्ग में गया। ये क्या विद्या है, मैं जानना चाहता हूं। स्त्री ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, महाराज को बता, तूने ये परीक्षा कैसे की कि ये नरक में गया और ये स्वर्ग में। लड़की कहने लगी, महाराज लोग मुर्दा लिए जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि कहां से आया है, किस मोहल्ले का है। फिर मैं पता लगाकर उस मोहल्ले में पहुंची तो लोगों को रोते देखकर पता लगा कि इस घर का आदमी मर गया। उनके पड़ोसियों के घर में जाकर सुना तो लोग कह रहे थे कि वो आदमी मर गया तो हम तो निहाल हो गए। सबकी चुगली करता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था और झूठी गवाही देकर फंसा भी देता था। भाई वो तो बहुत दुख देता था, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, आफत। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो आकर कहा कि वो नरक में गया। दूसरा मुर्दा आया तो उसका भी पता लगाकर मैं उसके मोहल्ले में गई। वहां लोग बातें कर रहे थे, राम राम गजब हो गया, वो आदमी तो हमारे मोहल्ले का एक प्रकाश था। संत महात्माओं को बुलाया करता था, सत्संग कराता था। भाई कोई बीमार हो जाए तो रातों जगता, किसी पर कोई आफत आती तो उसकी तन मन धन से सहायता भी करता था। वो चला गया, हमारे तो मोहल्ले में अंधेरा हो गया। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी तो आकर कहा कि वो स्वर्ग में गया। पंडित जी बोले, अरे ये बातें तो हमारी पुस्तकों में भी लिखी हुई हैं कि अच्छे काम करने वाले की सदगति होती है और बुरे काम करने वाले की दुर्गति होती है, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती।

अब से थोड़ी ही देर बाद 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला, 9:31 पर कार्यक्रम कुदरत के रंग। लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी फरमाइश 10:00 आप सुन सकते हैं।

सुबह 11:05 पर पुरानी फिल्मों से गीत, पहाड़ी संगीत 11:30 पर, 12:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

म्यूजिक मस्ती आप सुनते हैं 1:10 पर। 2 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सबरंग का। शिखरों के स्वर कार्यक्रम में सुनेंगे लोकगीत 2:30 पर।

ओल्ड हिट फिल्म संगीत 3:10 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:30 पर।

शाम 4:20 पर हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में सबसे पहले सुनिएगा चंबियाली कार्यक्रम, 4:50 पर मंडियाली कार्यक्रम, 5:20 पर पंगवाली, 6:06 पर कांगड़ी और 6:35 पर महास्वी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा।

कृषि जगत कार्यक्रम शाम 7:10 पर, रात 8 बजे सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 9:15 पर कार्यक्रम एक फिल्म से।

मेल पर बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन रात 9:30 पर। 10 बजेगी सजेगी गजलों की महफिल और सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं रात 10:30 पर।

0: तो ये तमाम कार्यक्रम आज आप 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला पर सुन सकते हैं।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं। 7:15 होने को हैं। पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला।

नमस्कार, हमारे सभी प्यारे लिसनर्स का दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में हार्दिक अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो हमसफर में भारती आपके साथ होंगी, करेंगे कुछ बातें आज की और इतिहास की। फिल्मी गीतों के साथ हम ये सफर तय करेंगे। तो आगाज कर रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम का फिल्म काला बाजार के इस गीत के साथ। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मेरी अपनी मंजिलें हैं, मेरी अपनी दौड़। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इनसिक्योर पीपल ट्राई टू मेक यू फील स्मॉलर, कॉन्फिडेंट पीपल लव टू सी यू वॉक टॉलर। कमजोर लोग आपकी चमक से परेशान होते हैं, मजबूत लोग उसी चमक में आपका भविष्य देखते हैं। किसी को छोटा करके कोई बड़ा नहीं बनता, दूसरों की गलतियां गिनाने से किसी का चरित्र महान नहीं बनता। समझदार लोग अपना समय और ऊर्जा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों की कमियां तलाशने, आलोचना करने और चुगलियों में ही उलझे रहते हैं। याद रखिए, ऐसे लोगों को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें उनकी सोच के साथ छोड़ दीजिए, उनसे आवश्यक दूरी बनाए रखिए और आप अपनी ऊर्जा, अपने सपनों, अपने काम, अपने विकास और अपनी मानसिक शांति पर केंद्रित कीजिए, क्योंकि जीवन तब सबसे सुंदर और सफल बनता है जब आपका ध्यान लोगों की कमियों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों, अपने कर्म और अपनी प्रगति पर होता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

लिखा है वक्त ने जो भी मिटाए से नहीं मिटता, हकीकत खुद बयां होगी, जमाने की गवाही क्या। जो बिल्कुल सच है तो फिर आपको बताते हैं कि आज के इतिहास में क्या हुआ था खास। जून 1756 की रात आज ही हुई थी कलकत्ता की ब्लैक होल ट्रेजेडी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स पर कब्जा करने के बाद 146 ब्रिटिश युद्धबंदियों को एक बहुत छोटी 14x18 फुट की कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसके बाद उनका दम घुटने, अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण 123 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच तनाव बहुत बढ़ गया, जो अंततः 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का मुख्य कारण बना। सन 1837 में मात्र 18 वर्ष की आयु में विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन संभाला। उन्हें 63 वर्षों की इस लंबे शासनकाल को इतिहास में विक्टोरियन ईरा कहा जाता है, जिसके दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया भर में सबसे तेजी से विस्तार हुआ था। बीस जून 1858 को सिपाही विद्रोह के दमन का अंतिम चरण माना जाता है। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर अपना

0: नियंत्रण किया था, लेकिन 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद ब्रिटिश सेना ने 3 दिनों के भीतर 20 जून को किले को पूरी तरह अपने कब्जे में लिया, जिसे औपचारिक रूप से सिपाही विद्रोह के दमन का अंतिम चरण माना जाता है।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

तुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आज ही के दिन 1887 को मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल की शुरुआत हुई थी। इस भव्य रेलवे स्टेशन को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ये स्टेशन विक्टोरियन गॉथिक शैली और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। ईयर 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया और 2004 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। तो ये था आज का इतिहास। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। हमारे जिन श्रोताओं का आज जन्मदिन है या सालगिरह है, उन्हें आकाशवाणी एफएम शिमला की ओर से मुबारकबाद। और अब कार्यक्रम में समय है एक और गीत का। हीरो फिल्म से आपको ये गीत हम सुनवा रहे हैं।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
4: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
5: बीस जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2000 में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को मनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य युद्ध और उत्पीड़न के कारण अपने घर छोड़ने को मजबूर लोगों के साहस और संघर्ष का सम्मान करना है। आज पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा के सदस्यों ने भारत के विभाजन के समय मतदान किया था। इसमें बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों को अलग करके एक नया प्रांत पश्चिम बंगाल बनाने का निर्णय लिया गया था। शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला, और अब आपको हम सुनवाएंगे गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है मिशन मजनू।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल करें। और रात 9:30 पर सुनिएगा ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं और अब समय हो चुका है एफएम न्यूज हेडलाइंस का, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में वन विभाग की एक बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की एक व्यापक योजना तैयार करने के विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को सुदृढ़ करने और दूरदराज के क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल शिमला स्मार्ट सिटी के पहल के अंतर्गत विधानसभा परिसर के समीप विकसित किए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने मल्टी फैकल्टी भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सीबीटी लैब का लोकार्पण भी किया। टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले में ठियोग क्षेत्र के बगैण में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक और राजकीय प्राथमिक स्कूल के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया है और पहले चरण में राज्य के 151 स्कूलों में ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कल 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपनी साधारण बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि अपने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और उसके बाद घर लौटने के लिए परीक्षार्थी निगम की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ये रियायत 20 जून से 22 जून तक मान्य रहेगी।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: ये है एफएम शिमला 8 बजने को है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का

0: संदेश आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

0: वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से

0: Dravid Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं. आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस. नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे. इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी. राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में कांगड़ा लघु चित्रकला में लोक एवं ग्रामीण जीवन का चित्रण स्वदेशी भारतीय कलात्मक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य विषय पर आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांगड़ा लघु चित्रकला भारतीय कला की महान परंपराओं में एक विशिष्ट स्थान रखती है. उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना हमारा दायित्व है. कल 21 जून को दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल शिमला स्मार्ट सिटी पहल के अंतर्गत विधानसभा परिसर के समीप बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला में वन विभाग की एक बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत 2,183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की एक व्यापक योजना तैयार करने के विभाग को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को सुदृढ़ करने और दूरदराज के क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार ने 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है. इससे प्रदेश में लगभग 7,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शिमला में दृष्टिबाधित एसोसिएशन और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी. राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में अनुकंपा के आधार पर 3 लोगों को नौकरी प्रदान की है. बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इन लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं. राजेश शर्मा ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर दी गई नौकरी दुख की घड़ी में 3 परिवारों का सहारा बनी है. FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही. नमस्कार. वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे FM न्यूज हेडलाइंस. लीजिए पेश है लोक संगीत.

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं लोक संगीत। अभी आप सुन रहे थे योगेश शर्मा को, अगली आवाज अमरनाथ शर्मा की। आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं चंद फिल्मी तराने।

लुटेरा, इस फिल्म से आइए सुनते हैं ये गीत मोनाली ठाकुर की आवाज़ में, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और कंपोज किया अमित त्रिवेदी ने।

लैला मजनू। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जोई बरुआ ने इस गीत को गाया और कंपोज किया, लिखा था इसे इरशद कामिले। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं ये बॉलीवुड नंबर्स। लीजिए अब पेश है अगला गीत। फिल्म का नाम है बॉलीवुड हॉलीवुड। सोनू निगम और अलीशा चनॉय ने इस गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं, लिखा है अजय विरमानी ने और कंपोज किया संदीप चौटा ने। आइए सुनते हैं।

हॉलीडे इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, बोल इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। सिंघम इस फिल्म से आइए अब सुनते हैं अगला गीत। स्वानंद किरकिरे ने ये गीत लिखा है, कंपोज किया है अजय अतुल ने। श्रेया घोषाल की आवाज़ लीजिए पेश है।

श्रेया घोषाल, अजय और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सिंघम फिल्म से ये गीत। आइए अब आपको सुनाते हैं अगला नगमा। फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो। आतिफ असलम और चिन्मय की आवाज़ें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य और अर्शद कामिल ने ये गीत लिखा है, संगीत दिया है प्रीतम ने। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

लिखा और कंपोज किया प्रीतम ने। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप बने हुए हैं हमारे साथ। आइए अब आपको बताते हैं कि आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रम।

सुरबेला में 9:30 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा से सुनिएगा आज राग मियाँ की तोड़ी। 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम रिमझिम। 12:20 पर महिला सम्मेलन। सैनिकों के लिए कार्यक्रम 1:10 पर और 2 सुनहरी किरणें। बजकर 55 पर आज आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय किसान निधि योजना के 23वीं किश्त के वितरण समारोह का सीधा प्रसारण। 5:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम सुनिएगा। 8 धारावी गीत। 8:30 पर सुगम संगीत। 9:15 पर हिमदर्शन आप सुनेंगे। 9:30 पर रात को राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आज आप आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर सुन सकते हैं। आप बने हुए हैं हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी शिमला है। 9:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के धर्मशाला हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
6: अच्छा, इसमें क्या होगा?
5: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
6: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
6: अच्छा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार नियम के तहत 2183 सड़कों को वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित। और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य को पाने में युवाओं का बड़ा योगदान होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
1: इस योजना के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूं, करीब 12 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। लक्ष्य यही है कि हमारा देश जो एक युवा देश है और इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो और युवा हमारा स्वावलंबी बने, अपने लिए अपितु दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाब, उस दृष्टि से ये उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
0: इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है।
2: रोजगार को बढ़ाने के लिए कदम जो है किया गया, इसको हमने हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया है और लगभग कोई 5,500 कर्मचारी जो है हिमाचल प्रदेश के लाभान्वित हुए हैं और कोई 5.5 करोड़ रुपए के करीब जो है इंसेंटिव के रूप में राशि जो है वितरित की गई है। तो एक बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा कदम है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, स्किल डेवलपमेंट वाले लोग हैं, वो किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में आए, सर्विस सेक्टर में आए, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, इनको मेडिकल कवर भी दिया जा रहा है और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने के आसार है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई सड़कें दूर दराज के लोगों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती है और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि भारत की महान कलात्मक परंपराओं में कांगड़ा लघु चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है। वे कल शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कांगड़ा लघु चित्रकला शिविर में निर्मित कलाकृतियों की 5 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अमूल्य कलात्मक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति, ज्ञान व परंपराओं के संरक्षण के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों की सराहना भी।

0: भी की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विधानसभा परिसर के समीप बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस फ्लाईओवर परियोजना के प्रगति कार्यों के निरीक्षण कार्यों के दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से यातायात की सुगमता होगी और संपर्क व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित। कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2,500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: भारत सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन युवाओं ने काजा स्थित ITBB बेस कैंप का भ्रमण किया, जहां उन्हें सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन, कर्तव्यों और चुनौतियों के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद युवाओं ने DFO स्पीति गोल्डी छाबड़ा के साथ संवाद कर क्षेत्र के जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध की मॉनेस्ट्री लालुंगाव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में शामिल चिचम पुल का भी भ्रमण किया। 21 सदस्यीय ये युवा दल ग्यू, होल्डिंग, लालुंग और काजा खास सहित सीमावर्ती गाँव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को सीमा, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 22वीं बैठक कल शिमला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव के पंत ने की। बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंत ने कहा कि बैठक में जल की हिस्सेदारी, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, नीट अभ्यर्थियों को HRTC बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा, 20 से 22 जून तक एडमिट कार्ड दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। हिमाचल दस्तक के शब्द है, अब BBMB में हिस्सेदारी और एरियर के लिए लड़ेंगे CM सुक्खू। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, हिमाचल के जंगलों में 22,600 करोड़ का खजाना, अर्थव्यवस्था के लिए बनेगा संजीवनी। पंजाब केसरी बतौर जयराम ठाकुर लिखता है, प्रदेश के हितों को बेच हितेशी बनने का कर रहे ढोंग मुख्यमंत्री। बघाट बैंक की BOD को सरकार ने किया सस्पेंड, 30 दिन में मांगा जवाब, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त करेंगे जारी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार नियम के तहत

2183 सड़कों को वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को दिए निर्देश। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभियान करेगा संचालित और कल दुनिया भर में मनाया जाएगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
2: पर ये है FM शिमला। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम कुदरत की रंग।

कुदरत के सभी रंग बेहद खूबसूरत हैं, जैसे हरा रंग, पेड़ पौधे, जंगल और हरियाली आंखों को सुकून देते हैं। इसे जीवन, ताजगी और सुकून का सबसे सुंदर रंग माना जाता है। वहीं विशाल आसमां और गहरे समंदर का नीला रंग शांति, गहराई और अनंतता का प्रतीक। जब आसमां में लाल, नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंग एक साथ मिल जाते हैं तो इससे और ही खूबसूरत रंग निकल कर आता है। लेकिन दुनिया का सबसे अनमोल और हसीन रंग है इंसानियत का, जिससे हमारा दिल सुकून और खुशी पाता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग, अपनी रेडियो हम सफर भारती के संग।

कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं इंसानियत की, वो रंग जिसे दिल से महसूस किया जाता है। कुदरत ने इंसान को बनाया और उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावनाएं भरी। अगर इंसान के अंदर इंसानियत और संवेदना ना हो तो वो कुदरत के बाकी खूबसूरत रंगों की सुंदरता को भी महसूस नहीं कर पाएगा। देखिए ना, कुदरत के बाकी रंग जगह और मौसम के साथ बदल जाते हैं, लेकिन इंसानियत का रंग हर देश में, इंसान में एक जैसा ही खूबसूरत दिखाई देता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग।

हर इंसान कुदरत के हसीन रंगों को करीब से देखना महसूस करना चाहता है। शहरों की भागदौड़, प्रदूषण और मानसिक तनाव से दूर पहाड़ों की शांति और हरियाली हर किसी को अपनी ओर खींचती है। हर साल लाखों लोग सुकून की तलाश में पहाड़ों का रुख करते हैं, और आए भी क्यों ना, इन कुदरत के नज़ारों पर हक सबका है। पर अक्सर ये भूल जाते हैं कि हक सबका है तो ख्याल रखने का फर्ज भी सबका है ना। कुदरत का

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। बात कर रहे थे इन हसी नजारों की, जिन पर हक सबका है। और हक सबका है तो ख्याल रखने की जिम्मेवारी भी सबकी है। पर्यटक अक्सर पहाड़ों में आने पर हक को याद रखते हैं, घूमने का हक, आज़ादी का हक, पैसा खर्च करने का मजा लेने का हक, लेकिन अपने फर्ज भूल जाते हैं। जब लोग पहाड़ों में कचरा फैलाते हैं, तेज संगीत बजाकर शांति को भंग करते हैं या लोकल कल्चर का सम्मान नहीं करते, तो स्थानीय लोगों को ठेस पहुंचती है। पहाड़ी लोगों के लिए या जहां भी आप घूमने जाएं, उनके लिए वो घूमने की जगह नहीं बल्कि उनका घर है, उनकी रोजी रोटी है, उनकी आस्था है। जब कोई आके

आपके घर को गंदा करे, हंगामा मचाए, तो सब्र टूट जाता है और बात बहस और मारपीट तक पहुंच जाती है। यहाँ हमें कुदरत के उस सबसे अनमोल रंग को याद रखने की ज़रूरत है जो हम में, आप में बसता है, इंसानियत का रंग। पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों इस बात को समझें तो स्थितियाँ बदल सकती हैं। पर्यटक पहाड़ों को अपना घर समझें, प्लास्टिक कूड़ा कचरा ना फेंकें, शांति बनाए रखें और स्थानीय लोगों के साथ सम्मान से पेश आएं। वहीं स्थानीय लोगों को पर्यटकों को अपने मेहमान अतिथि देवो भव की तरह देखें और छोटी गलतियों पर गुस्सा होने के बजाय प्यार से समझाएं। इस बात को ध्यान में रखें।

तो प्यार बांटते चलिए। जब भी पहाड़ों पर आए या कहीं भी घूमने जाएं, तो सिर्फ अपना प्यार और अच्छी यादें छोड़ें, कचरा या विवाद नहीं। याद रखिए, इंसानियत ही प्रकृति का सबसे अनमोल रंग है। कुदरत के रंग प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आपकी रेडियो दोस्त भारती के साथ आज आप ये प्रोग्राम सुन रहे थे।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुदरत के रंग, और अब वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का। लीजिए पेश है।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक कारगर पहल है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत की महान कलात्मक परंपराओं में कांगड़ा लघु चित्रकला का एक विशिष्ट स्थान है। वे कल शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कांगड़ा लघु चित्रकला शिविर में निर्मित कलाकृतियों की 5 दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अमूल्य कलात्मक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विधानसभा परिसर के समीप बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस फ्लाईओवर परियोजना के प्रगति कार्यों के निरीक्षण कार्यों के दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने से यातायात की सुगमता होगी और संपर्क व्यवस्था में बेहतर सुधार होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। पुनः परीक्षण कल देश के 551 शहरों में और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन कल इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 22वीं बैठक कल शिमला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव के पंत ने की। बैठक में उत्तरी क्षेत्र परिषद के सहयोगी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एफएम न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज़।

0: 103.7 megahertz FM Shimla. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. 103.7 megahertz FM Shimla.
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला. श्रोताओं, आपको बता दें कि दिन को 1:10 पर आप सुन सकते हैं फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती. अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर. 10 बज चुके हैं. पेश है लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी फरमाइश.

नमस्कार, लाइव फोन इन कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है। भारती के साथ आज आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का हम कर रहे हैं इंतज़ार। आप हमें कॉल कर सकते हैं फ़ोन नंबर 2808034 या फिर 2808152 पर। हमारा एसटीडी कोड है 0177। तो देर किस बात की, मिलाइए कॉल और अपनी फरमाइश बताइए, गीत सुनिए। जब तक आपके गीत हम तक पहुंच रहे हैं, हम आपको सुनवा रहे हैं खुद्दार फिल्म से ये गीत आपके लिए, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। बोल मजरूह के हैं और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। तो लीजिए पेश है आपकी फरमाइश, फिल्म का ये पहला गीत आपके लिए।

0: आपकी फरमाइश। लाइव फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। पहले कॉलर कार्यक्रम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कौन है वो। हेलो,
1: प्यार और सत्कार भरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सोम दत्त बोल रहा हूँ जी, जिला पटियाला नाभा पंजाब से जी।
0: सोमदत्त जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले आप फरमाइश बताएं, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: हम सुनेंगे जी, आपके चैनल पे गीत सुनेंगे, लैला मजनू फिल्म का गीत है जी।
0: जी,
1: लैला नाम जमी पे लैला लैला करता हूँ
0: जी। आपकी फरमाइश हम पूरी की देते हैं, आपने कॉल किया इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: जी, तो सोमदत्त जी की फरमाइश पर लैला मजनू फिल्म का एक गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे लिखा है साहिर ने और कंपोज किया मदन मोहन ने।

0: आपकी फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152, एसटीडी कोड है 0177। अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर
0: रखा। लगता है जिनसे हम बात करना चाह रहे थे उन्होंने हमारी ही कॉल को होल्ड पे रख दिया है, तो हम कॉल पर आपसे ज़रूर बात करेंगे। आप दोबारा नंबर मिलाइएगा। और अब आपको हम सुनवा रहे हैं एक गीत बॉबी फिल्म से, आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
3: मैं सोना मरक से लतीफ अहमद रैना।
2: लतीफ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपकी फरमाइश में बताएं, आपकी फरमाइश क्या है, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
3: दिल है तुम्हारा है।
2: दिल है तुम्हारा, इस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
3: उसमें है ना वो गाना कसम खा।
2: जी जी बिल्कुल, आपको हम सुनाए देते हैं। आपने कार्यक्रम में कॉल किया, अपनी फरमाइश बताई, इसके लिए धन्यवाद। आपकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं, ठीक है?
3: धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद जी। दिल है तुम्हारा इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, जिसे लिखा है समीर ने, कंपोज किया नदीम श्रवण ने।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम 2808034 2808815 2। इन नंबरों पर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी फरमाइश पूरी कर सकते हैं, गीत सुन सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपकी फरमाइश बताएं।
1: जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोल है लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से।
0: जी, आपकी ये फरमाइश हम पूरी किए देते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, आपको सुनवाई देते हैं प्रेम जी ये गीत।
1: जी, थैंक यू सो मच
0: कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, धन्यवाद। तो इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है अरुण भैरव ने और संगीतकार साजिद वाजिद।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफल।

0: सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो
2: जी,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: आपकी फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो,
2: हाँ जी, हाँ जी, मैं ओम प्रकाश कर रहा हूँ जी। बात आपसे पहले जो रखा हूँ मैंने आपके साथ की।
1: जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं बताएं जी?
2: हाँ जी,
1: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं जी?
2: दिल वाले से मतलब दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: दिलवाले फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं सर?
2: जी जी जी
1: जी, दिलवाले फिल्म का गीत आपको सुनवा देते हैं। ओम प्रकाश जी करसोग से बात कर रहे हैं ना?
2: जी जी
1: जी, आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद। दिलवाले फिल्म से आइए सुनते हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, कंपोज किया नदीम श्रवण ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो।
5: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
5: मैडम जी मैं पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से।
4: जलंधर पंजाब से जी, आपकी फरमाइश बताएं। आपने आपकी फरमाइश कार्यक्रम में कॉल किया
5: है। मैडम जी आपके यहाँ हमारा फोन लगा है तो मैं बहुत खुशी हुई आज
4: जी। अच्छी बात है, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
5: गीत मैडम प्रेम रोग का सुना दीजिए
4: जी। प्रेम रोग का आपको गीत सुनवाई देते हैं, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में। ठीक है जी,
5: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है
4: जी। हमें बहुत खुशी होती है आपके कॉल से, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
5: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 MHz FM शिमला पर। अभी फरमाइश आई प्रेम रोग फिल्म के इस गीत के लिए, तो आइए सुनते हैं संतोष आनंद का लिखा ये गीत, जिसे कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हेलो,
5: नमस्कार मैडम।
4: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
5: जम्मू से केशव शर्मा जी।
4: केशव जी, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
5: शुक्रिया मैडम, शुक्रिया जी।
4: जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
5: हाँ मैडम, और मुझे कोई भी गाना सुना दीजिए अपनी पसंद का। तो कुछ साथी हैं मेरे, मैडम है मेरी श्रीमती सुषमा रानी, बच्चे हैं मेरे अंशु शर्मा है, साक्षी है, दोस्त है मेरा एक यूपी से विजय पांडे जी हैं
4: जी,
5: और हमारे कठुआ से श्रोता है जी विद्या रत्न शर्मा जी।
4: चलिए, आप सभी के लिए हम प्ले कर देते हैं कालिया फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, ठीक है जी, जिसे लिखा है मजरूह ने और संगीत आरजी बर्मन का। आपने कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं गंगाधर सावनकर बात कर रहा हूँ।
1: गंगाधर जी का कॉल हमारे पास आया था, लेकिन किसी कारण से उनकी कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई है और ये कार्यक्रम के आखिरी कॉलर थे, तो अब इनके लिए हम प्ले कर देते हैं अपनी तरफ से खुदगर्ज फिल्म का ये नगमा। मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ें हैं, इंदिवर के बोल और संगीतकार राजेश रोशन।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम यहीं संपन्न करते हैं। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज हुगली जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उन्हें रोजगार देने के साथ अन्य के लिए भी रोजगार पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उस लक्ष्य को पाने में युवाओं का बड़ा योगदान होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है।
1: इस योजना के माध्यम से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें अगर मैं हिमाचल की बात करूं, करीब 12 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है। लक्ष्य यही है कि हमारा देश जो एक युवा देश है और इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस दिशा में हमारे युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान हो और युवा हमारा स्वावलंबी बने, अपने लिए अपितु दूसरों को भी रोजगार देने में कामयाब, उस दृष्टि से ये उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है।
0: इस बीच उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि योजना का लक्ष्य देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये एक अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत 2183 सड़कों के लिए वन भूमि हस्तांतरण की व्यापक योजना तैयार करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। शिमला में वन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क अवसंरचना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कई सड़कें दूर दराज के लोगों को महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करती है और विशेष रूप से राज्य के आपदा संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनः परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा निश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन इन युवाओं ने सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों का जीवन, यहां की संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को जाना। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: भारत सरकार के विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने स्पीति घाटी का दौरा किया। दूसरे चरण के दूसरे दिन युवाओं ने कादा स्थित आईटीबीपी बेस कैंप का भ्रमण किया, जहां उन्हें सीमाओं की रक्षा में तैनात जवानों के जीवन, कर्तव्यों और चुनौतियों के बारे जानकारी दी गई। इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद युवाओं ने डीएफओ स्पीति गोल्डी छाबड़ा के साथ संवाद कर क्षेत्र के जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। प्रतिभागियों ने प्रसिद्ध की मॉनेस्ट्री लालों गांव और एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन पुलों में शामिल चिचम पुल का भी भ्रमण किया। 21 सदस्यीय ये युवा दल ग्यू होल्डिंग लालों और कादा खास सहित सीमावर्ती गाँव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी गतिविधियों में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम युवाओं को सीमा, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्वभर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ FM शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM।

0: हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए।
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
0: FM

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यूनिन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और ये वक्त है पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाने का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति डोगरा और मेरे साथ है पुराने फिल्मी गीतों का ये सुरीला सफ़र। पुराने सदाबहार फिल्मों से हमने चुने हैं कुछ टाइमलेस गाने आपके लिए, तो आनंद लीजिए इन गीतों का हमारे साथ एफएम शिमला पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। प्रोग्राम का ये पहला गाना जिंदगी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। और अभी आपने जो गीत सुना, ये गीत हमने चुना था जिंदगी और ख्वाब फिल्म से। सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ें थी, प्रदीप के बोल थे, संगीत था दत्ताराम का।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला, पुराने

फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं हमारे साथ, ये टाइमलेस गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला पर। और हिंदी सिनेमा के पुराने दौर की जब बात चली है ना दोस्तों, तो उस दौर की एक टाइमलेस ब्यूटी की बात करते हैं। ये अदाकारा पहली साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें हिंदी सिनेमा की फर्स्ट फीमेल मेगा स्टार का खिताब मिला था। हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल डीवा वैजयंती माला की, जो 50 और 60 के दशक की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। यानी उस समय में वो अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा मेहनताना लेती थी। अपनी खूबसूरती अदाकारी के अलावा वैजयंती माला नृत्य कला में भी माहिर थी, और उनके ऐसे कई गाने हैं जिनमें उनकी नृत्य कला का हुनर देखने को मिला है। तो आइए सुनते हैं डांसिंग डीवा वैजयंती माला पर पिक्चराइज्ड गंगा जमुना फिल्म का ये गाना। आवाज़ है इस गीत में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। नौशाद का लिखा ये गाना, जिसे संगीतबद्ध किया है शकील बदायूनी ने।

पुराने फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और अब अगला गाना आप सभी के लिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में नक्श लैलपुरी का लिखा ये गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है सपन जगमोहन ने। फिल्म का नाम है तेरी तलाश में।

पुराने दौर की ये मधुर गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला पर। प्रोग्राम है ये पुरानी फिल्मों से। दोस्तों, पुरानी हिंदी फिल्मों के गीतकारों में एक ऐसे भी शायर थे, या गीतकार कह लें हम उन्हें, जिनकी कलम में ना जिंदगी का हर रंग शामिल रहा, जो रुमानी गीतों के बादशाह और देशभक्ति गीतों के माहिर रहे, जिनके लिखे मजहबी पुराने गाने आज भी सुने तो लाजवाब लगते हैं। कलम के वो जादूगर फनकार थे हिंदी फिल्म और साहित्य जगत के मशहूर गीतकार और शायर शकील बदायूनी। उन्हें हिंदी फिल्मों का रोमांटिक शायर भी कहा जाता था। मुगले आजम, लीडर, मदर इंडिया, मेरे महबूब, बैजू बावरा, कोहिनूर, प्यार किया तो डरना क्या, 20 साल बाद, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके गीत वक्त की दहलीज लांघ कर अमर हो गए, और साथ ही अमर हो गया ये नाम शकील बदायूनी। तो उनका लिखा एक प्यारा सा गाना आपको सुनवा रही हूँ, प्यार का रिश्ता फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून किया है FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पर। और अब आज के लिए पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम यही ख़त्म होता है। आप यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

और अब FM शिमला पर ये वक्त है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का, और अब कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं इस लोक भजन के साथ। आवाज़ें हैं इस लोक भजन में बोधराज वर्मा और करमचंद वर्मा की।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना

0: वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। ये लोकगीत सुनिए ज्वाला प्रसाद शर्मा और अक्षर सिंह परमार की आवाजों में।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और हिमाचली लोक गीतों का आनंद आप ले रहे हैं यहाँ एफएम शिमला पर। और अब आपको सुनवाते हैं करनैल राणा की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की अपनी बोली में अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ।

ये पहाड़ी लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला पर। और अब कार्यक्रम के आखिर में स्मूथ स्वरों में सुनिए ये लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शक्ति।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गाँव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे।

0: प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu reached at her village Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today to celebrate her 68th birthday amid a warm welcome from local residents. Odisha Governor Haribabu Kambhambati and Chief Minister Mohan Charan Manji received the President on her arrival. Prime Minister Narendra Modi has arrived at Paharpur. The President will accompany the Prime Minister on a visit to her village and the two leaders will offer prayers at the sacred Santali Jahera and Ho Jahera groves. Later, the President and the Prime Minister will participate in a major public program at Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government. Development projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting

0: ये म्यूजिकल एंटरटेनमेंट एफएम शिमला पर यूं ही जारी रहेगा। आप ट्यून इन रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी शिमला है, लीजिए प्रस्तुत है महिला सम्मेलन। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों को गरिमा और
1: वीना शर्मा का
0: नमस्कार।
1: बहनों, इंसान जब अपना घर छोड़ता है तो सिर्फ चार दीवारें ही नहीं छोड़ता, वो अपनी यादें, अपने सपने और अपनी पहचान का एक हिस्सा भी पीछे ही छोड़ देता है।
0: बिल्कुल। देखिए बहनों, आज है 20 जून और आज का दिन पूरे विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा विषय है जो सीमाओं से परे है, भाषाओं से परे है और सबसे बढ़कर इंसानियत से जुड़ा है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए ना बहनों, घर एक ऐसा शब्द है ना जिसमें सुनते ही मन में सुरक्षा, अपनापन और अपने लोगों का

0: एहसास जाग उठता है।
1: जी
0: मगर ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान को युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदा या फिर उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो उनके लिए जीवन कितना कठिन होगा।
1: बिल्कुल विना, बहुत कठिन होगा। अपना घर छोड़ के जाने का ख्याल ही हमें डरा देता है।
0: जी
1: तो आज का जो ये दिन है, ये ऐसे ही लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और धैर्य को सम्मान देने के लिए समर्पित है, जिन्हें किसी न किसी मजबूरी में अपना घर या फिर अपना देश छोड़ना पड़ा हो।
0: जी बिल्कुल। और देखिए ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी शरणार्थी अपना घर किसी शौक या फिर पसंद से नहीं छोड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: उनके सामने अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है गरिमा कि उन्हें अपना घर छोड़कर निकलना पड़ता है। और अगर बात करें इस दिन के इतिहास की, तो साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके तहत जो है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बाद वर्ष 2001 से इसे आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा।
1: बिल्कुल। और देखिए, ये जो साल था ना 2000, जो आपने अभी बात की,
0: जी
1: वो इसलिए भी खास था क्योंकि इसी साल जो शरणार्थियों की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते
0: 1991 का जो शरणार्थी सम्मेलन है वो 50वीं वर्षगांठ थी।
1: जी। और देखिए बहनों, आज भी अगर हम देखें, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो विस्थापन का सामना कर रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष या फिर युद्ध या फिर जलवायु परिवर्तन हो गया या कोई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, अस्थिरता की वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो इस तरह के हम ये जो दिवस मनाते हैं, इनका आयोजन करने का मकसद यही होता है कि हमें याद दिलाना है कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो ही इनकी सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि आम नागरिक यानी कि हम और आप, हमारी जो संवेदनशीलता है, जो सहयोग है, वो भी इस मामले में बहुत आवश्यक होती है। देखिए, जब हम कभी किसी का दर्द समझते हैं ना, तभी तो हम उसके प्रति संवेदनशील बन सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और देखिए ना, इसी तरह के दिन अक्सर एक खास थीम के साथ मनाए जाते हैं। बात करें इस वर्ष के थीम की, तो ये है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। ये थीम हमें ये संदेश भी देती है कि शरणार्थियों को सिर्फ सहायता की नहीं बल्कि अवसरों, सम्मान और समाज में एक सी भागीदारी की भी आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल। और देखिए, ये अवसर जिनकी हमने अभी बात की, अगर ये उन शरणार्थियों को मिल जाते हैं, तो कई शरणार्थियों ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर शिक्षा भी प्राप्त की है, नए कौशल सीखे हैं और आज समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं।
0: जी। और देखिए ना गरिमा, ऐसे दिवस के बारे में सुनकर अक्सर जो है मन में ये सवाल आते हैं कि हम यानी आम नागरिक किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जागरूक होना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल।
0: जब हमें ऐसे विषयों के बारे में जानकारी होगी तभी हम इस बारे में सोचेंगे और कुछ करना चाहेंगे।
1: बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा जो शरणार्थी हैं या विस्थापित लोग हैं, उनके प्रति पक्षपात के बजाय हमें संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। हमारा जो मानवीय व्यवहार है वो हो सकता है कि किसी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला दे।
0: जी, तो आइए आज के इस विश्व शरणार्थी दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम मानवता, करुणा और सह अस्तित्व के मूल्यों को मजबूत करें, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति को सुरक्षित जीवन का अक्सर जो अवसर मिलता है तो पूरी मानवता थोड़ी सी और मजबूत हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो गरिमा, हमारी बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्यों ना अपनी बहनों को एक गीत सुनवा दें।
1: जी।

0: जी बहनों, जीवन का हर पड़ाव अपने साथ कुछ नई सीख और अनुभव लेकर आता है। युवा अवस्था में हमें सपनों के पीछे जो है दौड़ते हैं और वृद्धावस्था में उन सपनों की यादों के साथ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन अक्सर बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हमारे उत्साह को कम करने लगती है। तो ऐसे में यदि कोई सरल उपाय हमें फिर से सक्रियता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान

0: कर सके, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है।
1: बिल्कुल वीना, देखिए अब जैसे अभी इस गीत में भी हमने सुना कि नाव कागज़ की है और गहरा है पानी, लेकिन
0: जी
1: फिर भी हर हाल में हमें मुस्कुराते हुए उस पानी को, उस सागर को पार करना ही है।
0: जी
1: तो जीवन का जो पड़ाव है वो भी इस तरह ऊंचा नीचा होता रहता है, और एक समय जैसे आपने कहा कि वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते बहुत सी चुनौतियों का हमें सामना भी करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों का जो सामना करना है उसके लिए एक बहुत ही आसान सा एक उपाय है, और वो है योग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे योग की जो वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और खुशहाली का नया प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है, और वो है चेयर योग और अनुकूलित योग।
0: जी बिल्कुल। और देखिए ना, चेयर योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गरिमा, तो कुर्सी की सहायता से किया जाने वाला योग है। इसमें अधिकांश अभ्यास जो है बैठकर या कुर्सी का सहारा लेकर किए जाते हैं,
1: जी
0: तो ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्हें लंबे समय तक खड़े रहने में कोई कठिनाई होती हो,
1: बिल्कुल
0: या जिनके घुटनों कमर में दर्द हो, साथ में जो है गठिया अर्थराइटस हो, और साथ में संतुलन बनाने में है, जो शरीर को संतुलन बनाने में जुड़ी समस्याएं हो, तो बढ़ती उम्र के साथ जो है ये स्वाभाविक परिवर्तन आते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे में कई वरिष्ठ नागरिक जो है योग से दूरी बना लेते हैं।
1: बिल्कुल देखिए, उम्र के साथ ये सारी समस्याएं हम देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को कहीं ना कहीं इनका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन व्यायाम और योग जो नहीं करते हैं, इन इन कारणों से
0: जी
1: नहीं करते हैं, तो फिर शरीर के जो अंग हैं उनको भी नहीं हिलाते डुलाते हैं, तो इन समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कहते तो है कि हमें कहते हैं ना, शरीर एक मशीनरी है, इसे लगातार चलाते रहना चाहिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि उम्र के एक पड़ाव पे पहुंचकर इतने हम आसानी से योग या व्यायाम नहीं कर सकते हैं,
0: जी
1: तो यहीं पर हमारे घर के बुजुर्गों के लिए ये चेयर योग जो है एक सुरक्षित और सरल विकल्प बनकर सामने आता है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले हल्के योगासन स्ट्रेचिंग और श्वास अभ्यास शरीर को सक्रिय रखते हैं, और ये अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, जोड़ों की जकड़न को कम करते हैं, और साथ ही रक्त संचार को बेहतर बनाने में भी सहायक होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और साथ ही प्राणायाम ध्यान एक मित्र की तरह काम करते हैं, तो
1: जी
0: गहरी सांस लेने की जो सरल प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है, और अंदर एक नई ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार करती है।
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करें अनुकूलित योग की, तो ये योग की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हर व्यक्ति में के हिसाब की शारीरिक स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार जो भी अभ्यास हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं। यदि मान लीजिए किसी वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें गठिया है या फिर उच्च रक्तचाप है या हृदय संबंधित कोई समस्या है या फिर चलने फिरने में कोई दिक्कत आती है, कोई कठिनाई आती है, तो जो योग प्रशिक्षक है वो उनकी क्षमता के अनुरूप सरल और सुरक्षित अभ्यासों का चयन करते हैं और उन्हें सिखाते भी हैं कि किस तरह से आप यही योग को सरल तरीके से कर सकते हैं।
0: जी तो देखिए गरिमा, योग का सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाता है,
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए उम्र या शारीरिक सीमाओं को योग से दूर रहने का कारण नहीं बनने देना है, बल्कि उचित मार्गदर्शन और सावधानी के साथ योग जीवन के हर पड़ाव में लाभकारी हो सकता है।
1: बिल्कुल और देखिए, हमारी जो बहनें हैं उन्हें के बारे में कहा जाता है ना कि वो पूरे घर का ख्याल रखती हैं, तो वह ना हमें कोशिश करनी है कि हम अपने घरों में और फिर आगे चल के समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें योग अपनाने के लिए प्रेरित करें। ज़्यादा नहीं तो प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ही अभ्यास उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशहाली का संचार कर सकता है।
0: जी और देखिए बहनों, याद रखिए कि योग का अर्थ कठिन आसन नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन लाना है,
1: जी
0: और जब योग जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। अपने घर के बुजुर्गों को विश्वास दिलाएं कि वो आज भी सक्रिय हैं, सक्षम हैं, और जीवन का भरपूर आनंद लेने का अधिकार रखते हैं।
1: बिल्कुल

0: मैनो, वो कहते हैं ना कि हुनर छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पहचानने और निखारने की ज़रूरत होती है। जब शौक को उद्देश्य मिल जाता है तो वही फिर रोज़गार भी बन जाता है।
1: जी बिल्कुल। और किसी को गाना पसंद होता है गरिमा, किसी को बुनाई, किसी को पारंपरिक व्यंजन बनाना, तो किसी को लोक संस्कृति और लोक कलाओं को सहेजना होता है।
0: बिल्कुल।
1: और इसकी जो शौक को आप चाहे तो एक दिन अपनी पहचान और आजीविका का साधन भी बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो चलिए वीना, क्यों ना आज इसी बारे में कुछ चर्चा की जाए। बहनों देखिए, हमारा जो प्रदेश है वो सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे लोकगीत, हस्तशिल्प, खान पान, वेशभूषा और परंपराओं का भी पूरे देश में बोलबाला है। पहले इन कलाओं को सिर्फ परंपरा निभाने का माध्यम ही माना जाता था, मगर आज यही परंपराएं रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए ना बहनों, हमारे गांव में आज भी

0: बहुत सी महिलाएं ऊन कताई, बुनाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं और पारंपरिक पकवान भी बनाती है
1: बिल्कुल,
0: और लोकगीतों का ज्ञान भी रखती हैं। तो कई बार हमें लगता है कि ये तो सामान्य घरेलू काम ही है, मगर आज के समय में यही कौशल बाजार में मूल्यवान उत्पादन और सेवाएं भी बन चुके हैं।
1: बिल्कुल, देखिए जो काम कभी शौक समझे जाते थे वही आज व्यवसाय और करियर का जो है वो आधार बन रहे हैं, स्वरोजगार का आधार बन रहे हैं।
0: जी
1: आप देख लीजिए, हमारी जो पारंपरिक शॉल है या फिर जो हमारी टोपी है, ऊनी वस्त्र हो गए या फिर हाथ से बनी जो चीज़ें हैं, आज वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के भी अपनी पहचान बना चुकी हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो इन्हीं ये जो चीज़ें हैं इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। हम अपने प्रदेश हिमाचल की ही बात करें तो यहाँ पर कितने टूरिस्ट आते हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी पारंपरिक जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारी लोक परंपराएं हैं, उन्हें जाने, उन्हें समझे और उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ भी लेकर के वो जाना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र में व्यवसाय की जो अवसर है वो अपार हैं।
0: जी बिल्कुल गरिमा। और देखिए ना, महिलाएं चाहे वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या फिर अकेले ही उन उत्पादों का निर्माण करके ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बिक्री कर सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे आय तो बढ़ती ही है, साथ ही जो कला को भी पहचान मिल सकती है, यानी कि हुनर के साथ साथ सही दिशा भी मिल जाए तो सफलता की राह जो है और आसान बन जाती है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से देखिए जो पारंपरिक हमारे जो भोजन है वो भी आज रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन सकता है।
0: जी
1: आप देखिए जो हमारे सिड्डू है, बबरू है, चिल्लड़ा, सेपू बड़ी जैसे व्यंजन जो है वो आज सिर्फ हमारे घरों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। जो पर्यटन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बढ़ते प्रभाव के साथ जो ये हमारी पारंपरिक डिशेस थी जो हमारे घर में ही बनती थी, इनकी मांग भी अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप चाहें तो घर से बनाना शुरू कर सकती हैं, पारंपरिक व्यंजनों की केटरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सुंदर कढ़ाई करना आता है या फिर आप बुनाई का हुनर रखती हैं या फिर आपको सिलाई बहुत अच्छी आती है तो आप इनको भी व्यवसाय में बहुत आसानी से बदल सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। और देखिए गरिमा, अक्सर हम महिलाएं सोचती हैं कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होगी,
1: जी
0: मगर बहनों आपको बता दें कि कई सफल उद्यमों की शुरुआत घर के एक छोटे से कमरे और एक छोटे से विचार से ही शुरू हुई है।
1: बिल्कुल,
0: ज़रूरी है तो बस आत्मविश्वास, धैर्य और अपने हुनर पर भरोसा रखना, और जब हम अपने कौशल को पहचानते हैं तभी उसके विकास की दिशा में कदम बढ़ा पाते हैं।
1: बिल्कुल। तो बहनों देखिए, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी लोक परंपराएं हैं, वो सिर्फ हमारी विरासत ही नहीं बल्कि आज की तारीख में संभावनाओं का एक खजाना भी है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचानने की, संवारने की और नई पीढ़ी तक लगातार पहुंचाने की।
0: जी, और बहनों अगर शौक को सही दिशा मिले तो वो सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं रहता बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सफलता का मार्ग भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, तो इसी तरह से आप अपने शौक को नए आयाम दे सकते हैं और जीवन में लगातार आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी।

0: देखिए बहनों, मौसम अपनी करवट बदल रहा है और कभी तेज धूप लेकर आता है तो कभी तेज बारिश
1: बिल्कुल
0: तूफान, यानी कि कुल मिलाकर गर्मा तापमान में अचानक से बदलाव के जो कारण हो रहे हैं, हवा में नमी, प्रदूषण, एलर्जी फैलाने वाले कण जो है बढ़ने लगे हैं।
1: बिल्कुल वीना, देखिए आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत कड़कती तेज धूप लगी होती है,
0: जी
1: और शाम को जब घर जाने का वक्त आता है तो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि लगता है कि मानसून मान लीजिए आ ही गया है।
0: जी
1: तो बहनों, ऐसे मौसम में जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है ना, उनको इस मौसम में अपना खास ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ बहुत सी बीमारियों को भी लेकर आता है।
0: जी बिल्कुल, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यानी कि ये मौसम एलर्जी को लेकर भी जो है बढ़ावा देता है। तो इस मौसम में बहनों अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। अगर आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को खांसी, जुकाम, बुखार हो तो उन्हें मास्क लगाने को कहें और स्वयं भी लगाएं, और घर पर थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें।
1: बिल्कुल, देखिए घर पर ना हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो
0: जी
1: इनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी कहा है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है,
0: जी
1: क्योंकि ये जो इस तरह का वायरल होता है या खांसी जुकाम बुखार है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो
0: जी
1: ऐसे में अगर आपको खांसी या जुकाम है तो आप घर पर भी मास्क लगाएं, ताकि जिनको कोई समस्या है या घर पे आपके बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनको आप उनसे उचित दूरी भी रखें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो भी आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो खांसी जुकाम बुखार है उससे बहुत से और लोग भी संक्रमित हो सकते हैं।
0: जी बिल्कुल गरिमा, और साथ ही साथ देखिए बहनों, आप खांसते छींकते वक्त जो है टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें या फिर हाथ का इस्तेमाल करें, ताकि खांसते या छींकते वक्त जो है आपके कीटाणु दूसरे को ना फैलें। और उसके बाद आप हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। अगर घर से बाहर हैं तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर का जो है आप

0: स्वयं न बने, समय रहते जो है विशेषज्ञ की सलाह भी आप जरूर लें।
1: बिल्कुल। देखिए वीना, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं ना, वो कई बीमारियों में तो काम आ ही जाते हैं, लेकिन कई बार जो है ना, वो घरेलू नुस्खे अगर आप अपनी बीमारी की कितनी गंभीर है इसको देखते हुए ही आप अपनी बीमारी का इलाज खुद करें, वरना डॉक्टर के सलाह के बिना कोई दवाई बहनों आप ना लें, क्योंकि हो सकता है कि आप दवाई कुछ और कारण से ले रहे हो और उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए तो वो भला होने के बजाय कुछ ज्यादा ही बुरा हो सकता है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए गरिमा, अगर बहनों से हम बात कर रहे हैं कि अपने आहार का भी ध्यान रखें,
1: बिल्कुल
0: ताज़े फल, हरे पत्तेदार सब्जियों का, अंकुरित अनाज का इस्तेमाल करें, बाहर के खाने से परहेज करें, घर का बना ताज़ा खाना ही खाएं, सूखे मेवों के साथ विटामिन सी से भरपूर फलों को अपने आहार में आप शामिल करें, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत बनी रहे और रोगों से कोसों दूर रहें।
1: बिल्कुल। और देखिए, खान पान की अगर हम बात कर रहे हैं ना वीना,
0: जी
1: तो खान पान तो ये मौसम बदलने पर ही क्यों, हमारी बहनों को पूरे साल भर अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए।
0: जी
1: जो मौसमी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो डाइट है उसमें आप हर तरह का, जो वो कहते हैं ना, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। आपकी थाली में आपके पास प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए। खैर, ये बातें हम कह देते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये अमल में लानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घर पे बहुत से लोग होते हैं तो सब लोगों की अलग-अलग पसंद होती है, सबको अपनी पसंद का ही खाना अच्छा लगता है। तो
0: जी
1: लेकिन कोशिश करें बहनों, जितना हो सके आप किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट को बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करें। साथ ही बहनों, आप मजबूत बनी रहें और रोगों से कोसों दूर रहें।
0: जी
1: पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है और साफ पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
0: जी और देखिए गरिमा, पानी की बात हो रही है और जैसे कि अभी मौसम जो बदल रहा है वो बहुत सारे कीटाणु लेकर भी साथ में आता है, तो
1: बिल्कुल
0: पानी को उबाल कर ही पिएं और छान कर पिएं, और आपको पेट संबंधी परेशानियों से जो है ये दूर
1: दूर रख
0: रखेगा,
1: सकते हैं।
0: और स्वस्थ मस्त रहें और सतर्क रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए आपकी मुस्कुराहट को देखते हुए सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत।
1: बिल्कुल।

0: ये था महिला सम्मेलन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। 1 बजने को हैं। समाचारों के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के

0: लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियाँ पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर M.A. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Paharpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Centre and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public programme at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dhunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
1: पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला। ये वक्त है म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का।

0: जतिन ललित की ये शानदार म्यूजिक कॉम्पोजिशन आपने सुनी यस बॉस फिल्म के इस गाने में, जिसमें आवाजें थी अभिजीत और अलका याग्निक की। ये गाना लिखा था जावेद अख्तर ने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें।

0: और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: ये रोमांटिक लव सॉन्ग्स आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में अभी ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था समीर ने, कंपोज किया था ये गाना अनु मलिक ने, फिल्म का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें अधिकार जाने,
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: फिज़ा फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना, आशा भोसले की आवाज़ में समीर का लिखा ये गाना था जिसे कंपोज किया था अनु मलिक ने। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला पर कुमार सानू और सारिका कपूर की आवाज़ों में समीर का लिखा ये गाना एंजॉय कीजिए। हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म के लिए ये गाना कंपोज किया है नदीम श्रवण ने। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: मर्डर फिल्म का ये गाना सुनिए अमीर जमाल की आवाज में। सैयद कादरी के बोल हैं और म्यूजिक कॉम्पोजिशन है अनु मलिक की।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, बॉलीवुड में हर दिन नई फिल्में बनती रहती हैं और आज की फिल्में कई हज़ार करोड़ का बिजनेस करती हैं, सुपर हिट हो जाती हैं। गजनी फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना और आपको पता है आमिर खान की ये जो गजनी फिल्म थी, हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान वो पहले एक्टर थे जिनकी फिल्मों ने 100 और 200 करोड़ का आंकड़ा पार करके नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। गजनी मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था और 3 इडियट्स ने 200 करोड़ का बिजनेस किया था। खैर, बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग बातें हैं जो हम आपके साथ कभी ना कभी यहाँ पर शेयर करते रहते हैं और साथ ही साथ आपको ये जो एंटरटेनिंग म्यूजिकल नंबर्स हैं ये भी सुनवाते रहते हैं। खैर, मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की हमने बात की है तो उनकी फिल्म का एक और गाना मैं आपको यहाँ सुनवाऊँगी, लाल सिंह चड्ढा फिल्म से। ये गाना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में, लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन प्रीतम की। ये गाना इस संदेश के बाद।
1: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या होगा?
1: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
2: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
2: अच्छा,
1: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और अब प्रोग्राम का ये आखिरी गाना प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज़ों में, मनोज मुंतशिर का लिखा ये सॉन्ग जिसे कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने, और ये गाना हमने चुना है बॉर्डर टू फिल्म से।

0: और इसी प्यारे से गाने के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आइए अब एफएम शिमला पर सुनिए संगीत के विविध रंगों से सजा कार्यक्रम सब रंग।

0: और इसी गाने के साथ सब रंग प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और

0: अन्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मदन सिंह देव जी, प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृहमंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट

0: 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही दो दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला और ये वक्त है शिखरों के स्वर कार्यक्रम का। तो आनंद लीजिए हिमाचल के हिम शिखरों पर मधुर स्वर लहरियों से गूंजते इन लोकगीतों का। कार्यक्रम की शुरुआत जोगिंदर सिंह हाबी और साथियों की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ।

0: ये मस्ती भरा लोकगीत आपने सुना लोभा राम गुंजेटा की आवाज़ में। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये है कार्यक्रम शिखरों के स्वर।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी यह है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: टिंकू की आवाज में सुनिए ये लोकगीत।

हिमाचली लोक गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला पर, और अभी आपने दीप राम ठाकुर की आवाज़ में ये लोकगीत सुना। अगले लोकगीत में सुनिए राजकुमार वर्मा को।

सरला ठाकुर और सखियों की आवाज़ों पे अभी आपने ये लोकगीत सुना और इसी के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 MHz पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग को सशक्त और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाना जरूरी है। आज शिमला में लोक निर्माण विभागों में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।
1: पीडब्ल्यूडी के साथ काफी इंटरेक्टिव सेशन मैंने अपने डिपार्टमेंट मंत्री के साथ भी किए, लेकिन कई चीजों को हमने सुधारात्मक तरीके से आगे ले वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हमें कैसे सामना करना पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी की भूमिका हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बहुत सराहनीय रही।
0: संवाद सत्र को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाना वर्तमान समय की मांग है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर भारत में नई कार्यप्रणालियों व नवाचार आधारित समाधानों की आवश्यकता है। इस संवाद सत्र में हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। पेश है ये रिपोर्ट।
2: सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। NTA ने एक वक्तव्य में कहा कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के

0: 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा जिला में 12 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार ITBP की सेवाएं भी ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
1: कल नीट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है कि पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर ली और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर, एग्जाम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहाँ पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी व्यक्ति से ना आए।
0: कल दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष विश्व भर में लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। अब आप सुनेंगे शिमला जिले की चिट्ठी। लेखक हैं योगराज शर्मा और वाचक हैं शशि चौहान।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने 1 जून को लोकभवन शिमला से ऑल इंडिया NCC माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन दल को कुल्लू की माउंट देव टिब्बा के लिए रवाना किया। 6001 मीटर ऊंची चोटी फतह करने के लिए देशभर से चुने गए 24 कैडेट्स का ये दल पीर पंजाल रेंज जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं में साहस, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना मजबूत करते हैं। 25 मई को मनाली में हुए कठिन ट्रायल के बाद 12 सीनियर डिवीजन और 12 सीनियर विंग मिलाकर कुल 24 कैडेट्स चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट सील्ड सड़क पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लगाई जा रही रोक का 2 जून को विरोध जताया। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन, उसके बाद सचिवालय का घेराव कर चक्का जाम किया और फैसले को वापिस लेने की मांग की। 3 घंटे तक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ वकीलों की वार्ता हुई, जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी, जिसके बाद सड़क यातायात के लिए बहाल हुई। नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन 2026 का आयोजन किया गया, जिसको राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित किया। शिमला में 6 से 10 जून तक 71वीं राष्ट्रीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में 12 से ज्यादा राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देशभर से कलाकार, नर्तक, अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच समूहों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और उभरते कलाकारों को राष्ट्रीय मंच देना है। शिमला जिला के पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 6 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद शिमला के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में आयोजित किया गया। जिला की 13 पंचायत समितियों में संबंधित SDM व तहसीलदारों को शपथ के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों की निगरानी में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल का 8 जून से आगाज हुआ, जो 12 जून तक चला। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया, जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री

0: मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव एडवेंचर और रोमांच से भरपूर रहा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपने दो दिवसीय प्रवास के तहत 9 जून को शिमला स्थित होटल पीटरहॉफ पहुंचा। प्रवास के प्रथम दिन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक में निगम में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। 9 जून को हिमाचल कांग्रेस में अनुशासनहीनता को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई। कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे और पूर्व विधायक नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। शिमला के राजीव भवन में हुई अनुशासन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम देश के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल दर्ज होने पर शिमला के राम मंदिर में 10 जून को विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर नाचन से भाजपा विधायक व उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्र सेवा की कामना की। विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है जो देशवासियों के स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे शिमला जिले की चिट्ठी। लेखक थे योगराज शर्मा और वाचन स्वर था शशि चौहान का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और अब एफएम शिमला पर ये वक्त है ओल्ड हिट्स प्रोग्राम का।

साठ के दशक के कुछ सुपर हिट एवरग्रीन सॉन्ग्स हम लाए हैं आपके लिए इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का ये जो पहला गाना है ना, ये मैं प्ले कर रही हूँ आशा भोसले की आवाज़ में। वो कौन थी फिल्म से, राजा मेहदी अली खान का लिखा ये गाना, जिसे कंपोज किया मदन मोहन ने।

लीडर फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नौशाद की कॉम्पोजिशन थी, बोल थे शकील बदायूनी के। अगला गीत सुनिए, तीसरी मंजिल फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गाना, जिसे कंपोज किया है आर टी बर्मन ने।

ओल्ड हिट्स आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लता मंगेशकर की आवाज़ में सिकंदर आजम फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। बोल थे राजेंद्र कृष्ण के, धुन थी हंसराज बहल की। और अब प्रोग्राम का ये आखिरी गाना प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, जुल थी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में एस डी बर्मन का म्यूज़िक।

और इसी गाने के साथ ओल्ड हिट्स प्रोग्राम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम युववाणी।

उपहार भावनाओं का दर्पण है, उनमें अपनापन, विनम्रता और स्नेह झलकता है। लेकिन यदि उपहार देने के पीछे आपके अहंकार की तुष्टि छिपी हो तो उसकी चमक रिश्तों की मिठास को फीका कर सकती है। युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त निवेदिता शर्मा का सस्नेह नमस्कार। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपका दिन भी बेहतर रहा होगा आज का। और FM शिमला के साथ तो किसी का भी दिन बन जाता है, और तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होता रहता है, सो अलग जी। तो चलिए दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विनम्रता की भेंट, उपहार दें अहंकार नहीं। दोस्तों, घर के पुराने संदूक में रखी एक घड़ी, पीले पड़ चुके खत, किसी किताब में दबा सूखा गुलाब, या बचपन में मिला कोई छोटा सा खिलौना, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, ये उन पलों की आखिरी धड़कनें होती हैं जिन्हें समय बहुत पीछे छोड़ाया है। इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, एक छोटा सा उपहार उसे अचानक वर्षों पीछे ले जाता है। उस आवाज़ तक, उस स्पर्श तक, उस रिश्ते तक जो शायद अब उसके पास नहीं है। शायद इसीलिए कुछ चीज़ें समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। उपहार देना केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि मानव भावनाओं की सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में से एक है। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जहां एक वस्तु, एक छोटा सा इशारा भी या एक साधारण सा प्रयास भी मन के उन कोनों को उजागर कर देता है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। यह केवल देने और पाने का व्यवहार नहीं, ये रिश्तों की समझ, संवेदनशीलता और आत्मीय जुड़ाव की एक मूक परीक्षा है। सो फ्रेंड्स, कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आप पहले एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का पहला गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ज़रूरी नहीं हर उपहार कोई वस्तु ही हो, प्यार प्रवाह और सम्मान भी उपहार है, कभी देकर तो देखिए। उपहार मनुष्य की भावनाओं की सबसे शांत लेकिन सबसे गहरी भाषा है, ऐसी भाषा जिसमें शब्द कम पड़ जाते हैं और संवेदनाएं बोलने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार देता है तो वह केवल वस्तु नहीं देता बल्कि यह भरोसा भी देता है कि मैंने तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखा है और तुम मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक नाम नहीं हो। शायद इसीलिए जीवन के सबसे कीमती उपहार बाज़ारों में नहीं मिलते, वे किसी माँ के हाथों से बने खाने में छिपे होते हैं, किसी पिता द्वारा चुपचाप जेब में रखे गए नोट में, किसी दोस्त के अचानक कंधे पर रखे हाथ में, या किसी ऐसे व्यक्ति के लौट आने में जिससे उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी।

साइकोलॉजी कहती है कि किसी को कुछ देने पर हमारे भीतर भी सुख का अनुभव होता है। किसी अपने की आंखों में चमक देखना, उसके चेहरे पर मुस्कान देखना, यह आनंद कई बार पाने से भी ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन इसी भावना के साथ एक अनकही अपेक्षा भी जुड़ जाती है। हम चाहते हैं कि हमारी भावनाएं उसी गहराई से महसूस किए जाए। जब ऐसा नहीं होता तो भीतर कहीं हल्की सी उदासी जन्म लेती है। सो फ्रेंड्स, लीजिए प्ले करते हैं प्रोग्राम का नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक। सुनते रहिए और यूं ही गुनगुनाते रहिए।

युवानी कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। ट्यून इन है ARFM शिमला 103.7 MHz पर। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचलवासियों को उपलब्ध रहेगा। निवासी se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों हेतु किया जाता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। दोस्तों, आज का समय सुविधाओं का समय है। एक क्लिक में उपहार भेजे जाते हैं। चमकदार पैकिंग, महंगे ब्रांड्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने कई बार उपहारों को भावना से ज़्यादा प्रदर्शन बना दिया है। अगर इस चमक के बीच आज भी इंसान वही अपनापन खोजता है, क्योंकि उपहार की असली खूबसूरती उसकी कीमत में नहीं, उसमें लगाए गए ध्यान में होती है। कई बार कोई सस्ता सा उपहार भी इसलिए अमूल्य हो जाता है क्योंकि उसमें सामने वाले को समझने की सच्ची कोशिश छिपी होती है। जीवन के सबसे सुंदर उपहार भी अक्सर बिना योजना के आते हैं। रास्ते में किसी दुकान पर अचानक कोई चीज़ देखकर किसी की याद आ जाना, किसी पुराने गाने को सुनकर उसे किसी को भेज देना, किसी व्यस्त दिन में बस इतना पूछ लेना, तुम ठीक हो। ये छोटे छोटे पल ही रिश्तों की असली पूंजी होते हैं, क्योंकि इंसान को हमेशा बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती। कई बार उसे सिर्फ यह एहसास चाहिए कि वह किसी के मन में अब भी मौजूद है। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

एक उपहार तभी अच्छा लगता है जब वह किसी सही व्यक्ति के द्वारा दिल से सही समय पर सही जगह निस्वार्थ भाव से दिया जाता है। समय ही सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, उपहार देना मानव संबंधों की सबसे पुरानी और सबसे कोमल अभिव्यक्तियों में से एक रहा है। यह किसी वस्तु के आदान प्रदान के साथ ही भावनाओं, स्मृतियों और प्रेम को साझा करने का एक रूप भी है। मगर आज उपहार का अर्थ धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। हमेशा से उपहार को प्रेम और अपनेपन का प्रतीक माना गया है। हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र, किसी की पसंद की एक साधारण वस्तु या समय देकर किया गया कोई प्रयास, ये सब दिलों को जोड़ते थे। उपहार देने का उद्देश्य ही सामने वाले को खुशी देना होता था। आधुनिक जीवन शैली में उपहार अब दिखावे और प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुका है। महंगे ब्रांडेड और आकर्षक पैकेजिंग वाले उपहार रिश्तों की गहराई को नहीं बल्कि देने वाले की हैसियत और छवि को दर्शाने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपहार वास्तव में प्रेम का माध्यम रह गया है या वह अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन बन गया है। समय निरंतर गतिशील है, यह हर समय बीतता रहता है। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, परंतु हम इसे धरती पर सदा के लिए नहीं है। हमारा शरीर नश्वर है, इसीलिए समय भी हमारे पास सीमित ही होता है। अब यह हमारे स्वयं

के हाथ में है कि हम समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं। हमारे जीवन के किसी भी दौर में समय को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किसी थके हुए व्यक्ति को समय देना, किसी रोते हुए इंसान को बिना सलाह दिए सिर्फ सुन लेना, किसी का बोझ हल्का कर देना, किसी पुराने रिश्ते को एक फ़ोन कॉल से फिर से जोड़ देना, ये वे उपहार हैं जिनकी कोई पैकिंग नहीं होती, लेकिन इनकी याद सबसे लंबे समय तक रहती है। तकनीक के इस दौर में जहां हर चीज़ तुरंत उपलब्ध है, वहां समय सबसे दुर्लभ चीज़ बन चुका है। इसलिए आज अगर कोई अपना समय, अपना धैर्य और अपनी उपस्थिति किसी को देता है तो वही सबसे मूल्यवान उपहार है, क्योंकि अंततः इंसान चीज़ों से नहीं एहसासों से जुड़ता है। वे समय समय पर लौटकर याद दिलाते हैं कि कभी कोई हमें पूरे मन से याद करता था। सो फ्रेंड्स, लीजिए चलिए प्ले करते हैं कार्यक्रम का अगला खूबसूरत गीत। सुनते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।

सच्चा उपहार वही है जिसमें निस्वार्थता हो। उसकी कीमत लागत से नहीं, उसमें छिपे विचार और भावना से तय होती है। एक साधारण सा फूल भी किसी महंगे गहने से अधिक मूल्यवान हो सकता है यदि वह सच्चे प्रेम से दिया गया हो। लेकिन यह निस्वार्थता कब औपचारिकता बन गई पता ही नहीं चला। उपहार का असली सौंदर्य तो उसके भाव में छिपा था, तो फिर अहंकार का भाव कहाँ से इसके साथ जुड़ गया। सो वेल लिसनर्स, इसी म्यूजिकल ट्रैक के साथ फिलहाल युवाणी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने रेडियो हम सफ़र निवेदिता शर्मा को अनुमति दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी प्रोग्राम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ.
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं.
2: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है.
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं. शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी.
2: नियम और शर्तें लागू.
0: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और इस फ्रीक्वेंसी पर इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट चलता है साथ साथ. तो यूं ही ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

28 जून को शिमला में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो इम्यूनाइजेशन डे आयोजित किया जाएगा और बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। शिमला के 11 स्वास्थ्य खंडों में विशेष पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। इसके बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देंगे जो किसी रीजन से पोलियो बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, अगर आपने अपने किड्स को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाए हैं तो 28 जून को आप पोलियो बूथ पर जाकर उन्हें पोलियो ड्रॉप्स दिलवा सकते हैं। बहरहाल ये है FM शिमला और यहाँ पर म्यूजिक, मस्ती, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन सब चलता है साथ साथ।

0: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
1: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

और इसी गाने के साथ आज का आपका और हमारा ये म्यूजिकल सफर भी यहीं पर ख़त्म होता है। अपनी रेडियो दोस्त स्वाति डोगरा को दीजिए इजाज़त, टेक केयर, गुड बाय। लेकिन आप सुनते रहें FM शिमला 103.7 MHz पर। और अब FM शिमला पर शुरू होते हैं विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम, और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सबसे पहले अभी आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम।

मंडियाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभनिया जो पुष्प राजारी नमस्कार। तो देखा महाराज के भी कार्यक्रम वाला वक्त होया और कार्यक्रम मंज अज असा तुसा कने गलबात करनी कि भी मंडी रे जेड़े प्रसिद्ध मंदिर और देवी देवता रे बारे अंदर कने सौगी सौगी देखा गलबात लगानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे बारे अंदर और बांके बांके लोक गीत भी कार्यक्रम मंज तुसा जो सुनाने कने सौगी सौगी भी आसर आसे पासे क्या कुछ घटिया करा इतना कट्ठे देखा थोड़ी जी नवी ताजी भी तुसा सौगी लगानी। तो देखा महाराज के भी खबरी कि भी टीवी मुक्त भारत अभियाना जो लई कने पिछले कल नई दिल्ली मंज एक बैठकारा आयोजन जो से कित्या गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा होरिए बैठकारी अध्यक्षता की। प्रदेशारे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल होरिए शिमले ते वर्चुअल रे जरिए ते इस बैठक मंज हिस्सा जो से लित्या। तिने केंद्रीय मंत्री ते टीवी मुक्त हिमाचल रे लक्ष्य जो हासिल करने कठे पोर्टल एक्सरा रे मशीन उपलब्ध करवाने रा जड़ा आग्रह तिने कित्या। शांडिल होरिए दस्या कि भी टीवी उन्मूलना री दिशा मंज हिमाचल तेजी ते आगे बढ़िया और उच्च जोखिम वाले गाँव मंज संवेदनशील आबादी री स्क्रीनिंग एक्सरे जांच होर टीबी मरीजा री देखभाल जेड़े मापदंडा मंज प्रदेश जो से देशारे अग्रणी राज्य मंज शामिल जो से हया। तो महाराज ये देखा थोड़ी जी खबर हुई गई एवे एक बढ़िया जहा लोकगीत जो से पहले सुनी लिए।

पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम शून्य बाड़ियों से भैंजन महेंद्र कुमार तरफ बिल दी नमस्ते शून्य बाड़ियो है जे पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम में टेमी गल करूँ दुन के गल करूँ दिहाड़ी गल करूँ तो समारे ता बस्ते ता तठा शांच रहता नचे दिन अंतर जैसे हैं शून्य बाड़े पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम जैसे सुनी सकते टेमी गल करूँ तो बिल दी पाँच बज करी बीह मिनट क्या पाँच बज करी पंजा मिनट कर जैसे आधे घंटे जैसे हैं पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम होता तो सह सुनने वाले सुनी सकते डक वो खिलाते अस कुछ भारत सरकार स्कीमें बीती प्रदेश सरकार स्कीमें बीती जे मैणुआ दी फेदे बैड़ी तनी बारे जैसे जानकारी देते देशे प्रदेशे खबर सार भी जैसे सब कुछ सुनने वाले सुनाते बदिया बदिया गीते कुछ चमे गीते आ रहा पैंगे जे जरूर गीते लड़े तेने सुनाते कुछ पैंगे गीते आ रही कहीं गीते अस कहीं तेने आपू सुनने वाले सुनाते आज जे मुआ डकबो खलाने इसकी सियाकत आती जे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तसे बारे होरी जे डकबो खलाने इसकी सस्ती जे हैं जनजातीय इलाके इसते तने अंतर जैसे इको टूरिज्म बारे खबरसार मुआपू सुनने वाले जैसे सुनाने सुनाने अख बदे जनू गीत में जैसे सुभ्या क्या भेल तैयार थी रस्तू अस गीत सुनते फिर लाता हूँ तुझे डकबो ता सुने जी गीत

जी अत्रु बदेजनु गीत से सह सुनने वाले सुनो हाई बो मेरे कर्मों छेड़ा गीत्यार्थी नियामत हुसैन जे मुंडक वो खलानिस्ती सिलानिस्ती प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम अख भारत सरकार तरफा चलाओरी जे अख खास स्कीम अस्ती इस स्कीम अंतर गैर कारपोरेट तठा जे गैर कृषि है ना जे सूक्ष्म उद्योग है ना जे अपो व्यवसाय जैसे मठ मठ मतलब व्यवसाय चलाने चाहते तेंदी बना कसे गारंटी सरकार एक नारा जैसे 20 लाख रुपये कर जैसे लोन जैसे सरकार दैन गोरिस्ती कोई भी तेने क्या जैसे गारंटी दिटी जे प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम ही तहत जैसे अपू कम काज जैसे चलाना चाहते अपू कम धंधा खोलना चाहते अपू दी जैसे रोजगार उपाय करे कसे दुई चौरिया जैसे रोजगार देने चाहते था सरकार बोलू सरकार जैसे सोचो रिश्ते कि भाई कई भी है ना कम काज चलाना चाहता जैसे लग तू कि मुँह फलाना कम तक करना थे थोड़ी जैसे मुँह कहीं तंगी को नहीं थी रुपये के है ना तो सरकार बती प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम ही जैसे तुम पूरा फायदा नहीं सकते बना कसे गारंटी जैसे तुम 20 लाख रुपये कर जैसे सरकार बती मौके लोन नहीं सकते तो जे भी थोड़ी कहीं है ना कई भी जैसे नौजवान कम काज चलाना चाहता जैसे थोड़ी है ना सोच हस्ती कि नहीं रहा मुँह अपना कम काज करना है ना तो से जैसे स्कीम पूरा पूरा फायदा जैसे नहीं सकते। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम यूँ गल करूँ तो ऐसा अंतर जैसे बने बने है ना बंटोर अस्ते शिशु अस्ता किशोर अस्ता तरुण अस्ता तठा तरुण प्लस अस्ते यानी चौर जैसे चौ खाते जने बनाओ रस्ते यानी कि भाई कस अंतर जैसे कैतरे कैतरे अगर कसे लगतु कि रे मुँह सिर्फ शिशु है ना शिशु जे अख है ना स्कीम मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा अंतर शिशु जैसे छोटा जना बनाई थे है ना कि तैस अंतर जैसे मुँह तैसे तेत मुँह नैना तो तैस अंतर मतलब 50,000 तकर जैसे लोन का भी जैसे मैं काट सकता था अपू कम धंधा जैसे शुरू।

कर सकता। बोलने गल अस्ती कि जत भी पुगुत कैतरे अस्ती है ना, मुँह कतरा बड़ा जैसे कम काज चलाना अस्ता कैतरे रुपये के मुँह जरूरत हस्ती से शुभ तस हिसाब जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम अंतर जैसे हने चौ चौर जैसे वर्ग अंतर बंटोर अस्ती है ना, चौर जैसे से भाग किए रिश्ते शिशु किशोर तरुण तरुण प्लस। अब शिशु गल कर लगे ऐसा अंतर 50,000 तक जैसे लोन का भी मैन कर सकता जे आपू कम काज चलाना चाहता। अगर किशोर अंतर आए तो तैस अंतर 50,000 एक रुपये क्या 5 लाख रुपये तकर जैसे सरकार लोन दें लगो इसकी बिना कैसे गारंटी है पर यह कि कम धंधा कहीं ना कहीं से अब चला तो तैसे है ना, ता तो सरकार है जैसे जैसे इमदाद जे आती जे दवाई जैसे तुम्हें कोई तंगी नवे तस्ती तो तेनी फेद बूता आपू तसे कम है ना, तसे आपू तो कम काज चली पड़ता साथ खरा कम काज चलाए बटा तो दुई चौहरिया भी जैसे से कम काज दे सकता। फिर तस क्या पत्या पत्या अगर तुम्हें होरी भी जरूरत हस्ती नहीं रहा मुँह थोड़ा जैसे 5 लाख क्या ज़्यादा रुपये लगते तसे तरुण अंतर घाई करी है ना, तरुण जे अख ऐसे भाग हस्ता तस अंतर जैसे 5 लाख रुपये क्या जैसे 10 लाख रुपये तक लोन जैसे काई भी है ना, जैसे लगतू कि मुँह इतरे तकर मुँह जरूरत हस्ती तसे जैसे तरुण अंतर जैसे लोन काट सकता। पर कसे लगतू कि नहीं रहा मुँह सुहा जैसे है ना बड़ी जैसे रकम लेटी खड़ी 12-15 लाख 10 लाख क्या खड़ी तसे तरुण प्लस जैसे चौथा भाग के रहा तैसे तस अंतर जैसे 10 लाख क्या 20 लाख बस तकर जैसे लोन हस्ता तस जैसे काट सकते। लोन दी जैसे सरकार बोलू कि असें कोई भी जैसे तुम इन कि कोई गारंटी बाड़ा लेटा ना 20 लाख तक तुम जैसे काट सकते तो कुड़ी न कुड़ी जे थोड़ी है ना सोच था ता समझ था ता कि रमू फलाना काम धंधा तो करना है ना जैसे नहीं समझ वे ता से जैसे ऐसे प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम ही जैसे पूरा पूरा फायदा नहीं सकता है ना। ऐसी कोई इन्होंने कि खास दवाई जे पात्र भूते ना दवाई कम हैं जैसे ऐसा प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम जैसे फायदा नहीं सकते का जैसे ऐस स्कीम दी जे लोन है तीन तस्ती तस नहीं सकते। तो जे आप कृषि अंतर भी कम काज करते हैं ना कृषि जे जरूर जैसे कई डेयरी फार्म कई मुर्गी है ना मुर्गी पालन कई मधुमक्खी पालन कई मछली पालन छोटे छोटे कम काज है ना जे ग्रां गोठे जे नौजवान हस्ते है ना मैं हस्ते से तैयारी पू ग्रां गोठे विश कर भी जैसे कम काज जैसे चलाई सकते से जैसे ऐसे स्कीम पूरा पूरा फायदा जैसे नहीं सकते। अगर कसे लगतू कि मुँह थोड़ा है ना और जे कि भाई आखबू तो उन्होंने पंगवाड़ी गल करें भाई व्यापार जिन्हें मुँह चलाना आपू अके कम धंधा थोड़ा चलाना है तस्ती भी जैसे सरकार जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम अंतर जैसे 20 लाख रुपये तकर जैसे लोन दें गुरस्ती का जैसे स्कीमें फेद नहीं सकता है ना। जैसे उम्र 18 साल क्या खाड़ी बुन गई रिश्ती है ना पात्र तो लेटा लेटा ना अभी मठलू गए और बोल सर जैसे सोच लो दुआई मुँह नैठे तस्ते पता नहीं बुना काम काज भी नहीं बुना है ना। तो कुड़ी न कुड़ी जैसे उम्र 18 साल क्या खाड़ी बुन गई रिश्ती जानी कहीं काम काज सुचो रस्तु है ना या कैसे लगतू कि मुँह फलाना काम काज जैसे चलाना थे मुँह सब चीज़ें तो भाई तैसे आपको क्या अस्ती रुपये कहीं तांगे था से जैसे ऐसे प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीमें जैसे पूरा फायदा नहीं सकते आपू कम धंधा जैसे चलाई सकते। बोलने का है कि जे सरकार है ना कई भी जैसे स्कीम चलाती से मैनू के भलियाई ले कि भाई मैं देश जे मैन हस्ते है ना तरक्की करे से कई जैसे एन भी हस्ते मैन सोचते थे समझते थे कि यार मुँह कम धंधा तो चलाना है ना रुपये मुँह के कम हस्ते तो से एनी जे भी सरकार स्कीम हस्ती है ना प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम गल कर जैनी भी कम काज चो रस्ते अब है ना तो तस के कुनी बुती तंगी खास करी तर रुपये कहीं बुती है ना तो दू चौर मतलब दू चौर मैन मी करी भी जैसे काम काज शुरू कर सकते तसे भी ऐसी स्कीमें फेद नहीं सकते से आपू दी आपू जैसे रोजगार उपाय सकते साथ हुरियां भी जैसे कसे दुई चौर मैन जैसे रोजगार दे सकते। तो जे भी सरकारें स्कीमें बुती है ना प्रदेश सरकारें बोल केंद्र सरकारें बोल है स्कीमें के बारे जैसे जरूर थोड़ी सोच विचार करके है ना थोड़ी जागृति करके जे अन्य स्कीमें के बारे समझ करी जे भी काम काज जनिश्चोर है काम काज आपू शुरू करने चाहते चलाने चाहते तो तेने जरूर अन्य स्कीमें के फायदे लैने से है ना कुड़ी न कुड़ी जैसे आपू तरक्की करनी चाहिए तेरे अगर मैं तरक्की करा तो साथ साथ जैसे देश भी तरक्की होती। खेर मौके गल बुती बुछ बुछ जे भी है ना नहीं सरकारें स्कीमें बुती मैनू कहीं फेदे बैड़ी भलियाए बैड़ी तेने जैसे इठा जानकारी दैत रहे पंगवाड़ी बोले अंतर जैसे जानकारी दैते कुड़ी न कुड़ी बस आई है कि थोड़ी जागृति मैनू

अपुजेसिक है ना अब जागृति बोलने गला कि अंतर बैर सुने ये रुस्तु पुछ जाच करनी ये रिश्ते कि मैंने उन्हें सुनो थी तो तस्क्या पत्या जैसे अनस्कीमी के फायदा नहीं सकते है ना डकवोक तस बुछ बस लाते रहते खुर में बदजन घीत भी तैयार थे रिश्तु सुनते सुने जी।

सीतू प्रधान गीत्या अर्थ अनेक सिंह ठाकुर मौके देशे प्रदेशे खबरें भी इसकी पहले नहीं सुनाते। एन टी ए शू है ना बोने बाड़े नीट यू जी पेपर की शुभ तैयारी जैसे पूरी करी छोरी इसकी एन टी ए की वक्तव्य अंतर बोलूँ कि दोबारा पेपर पूरे देशे 551 शहरें अंतर जैसे तथा विदेश अंतर भी जैसे 14 शहरें अंतर जैसे बोना है 22,79,000 के ज़्यादा गैबरों जैसे इस पेपर अंतर जैसे भाग लैन आस्ता सातों प्रदेश अंतरी गल करें तो प्रदेश अंतरी मत गए अंतर जैसे नीट पेपर जैसे दस्ती खारी जैसे सुरक्षा व्यवस्था करी छोर इसकी कांगड़े जिले अंतर बारे जगह जैसे जैसे पेपर बोन आस्ता उपायुक्त हेमराज बेरवे जैसे बताओ कि परीक्षा जड़ी बोन इसती तैने तैने गई अंतर जैसे सुरक्षा ही खारे जैसे इंतजाम कर छोर इसती तस्ती पुलिस कर्मचारियों जैसे साथ साथ आई टी बी पी जवान के भी जैसे अने सेवाएं नैन इसती अने भी बोलूँ कि जे परीक्षा केंद्र इसते तस्पुट सी सी टी वी कैमरे लगोरे बोने इसते तो साथ साथ जेमर भी तैड़ी जैसे लगोरे बोने आई। अच्छा होरी खबर इसती मुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी नेतृत्व अंतर पिछले जे 12 साल अंतर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तथा सबका प्रयास सिद्धांत पुट भारत अंतर जैसे उल्लेखनीय तरक्की जैसे भोरी इसती सरकार गरीब के किसान के जलहनों के तथा नौजवान के कल्याण कन दिश सशक्त बनाने जैसे खास खास मती सारी स्कीमें जैसे चलौरी इसती आज असे सशक्त भारतीय संकल्प साकार करने वाली सरकार जैसे परिवर्तनकारी पहले के जानकारी जैसे देने इन्हें लौरी इसती अखोरी खबर इसती कि शू पूरे दुनिया अंतर जैसे 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन जैसे मनाई नस्ता अशकुंड साले जे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जे अख विषय थे रुतस्यस्ता कि स्वस्थ वृद्ध अवस्था के लिए भी योग बोलने गल अस्ती कि सो भी उम्री है ना माठे क्या बुजुर्ग तकर जत्रे भी जैसे मैन अस्ते है ना से सुब जैसे योग कर सकते ता आपू जैसे जान खारी बनाई सकते दुख जे बीमारी होती तस् क्या जैसे छुटकारा पाई सकते तै तो थी कुछ खास खास खबरें अब जो हो रही मुँह थोड़ी डकबो खिलाने से अस्ती हैं जे जनजातीय इलाके है ना अस्ते तहने अंतर जैसे इको टूरिज्म बारे जैसे डकबो खिलाने से इको टूरिज्म गल करें तो वह अस्ती कुदरती है ना जैसे सोते कि प्राकृतिक कुदरती वातावरण अंतर है ना अख करने वाले खास जैसे मैं बोलूँ कि जे हैं कुदरती चीज अस्ती तस बचाई थैन दी तसे संरक्षण कन दी जैसे इको टूरिज्म जैसे खास बोल सकते कि स्कीम अस्ती किसकी ऐसे इको टूरिज्म में गल है कि मतलब तैठनी रे मैनो है ना कसे भी इलाके अस्ते दूर दराज इलाके अंतर जे तैठनी जे आपू बोल सकते हैं कि जे स्थानीय है ना लोकल जे तैठनी मैन अस्ते जे एक समुदाय भूता तने जैसे कि रहना बहना आस्ता है ना कनी जैसे तने तठनी संस्कृति थी कनी से जे गए अस्ती है ना कुदरती की चीज़ अस्ती कुदरती जे बोते उन की नज़ारे कने हैं बाड़े हक से बचाई कर थैन अस्ती ऊपर से तने तने गए हैं भी अगर जैसे इको टूरिज्म बोलता तैनी बल कि भूतू कि अगर तने मतलब है ना कई घुमनार फुरनार मैनी हुए तैड़ी होम स्टे बनाई थी रस्ते तो तने जे पुरानी चीज़ भी होनी अस्ती अभी ग्रां गोठे गल करें है ना दूर दराजे तो तैड़ी अंतर जे मैना भी अभी बल्ले बल्ले पैंगे री गल करें तने भी जैसे होम स्टे बनाने लो रस्ते तो जे होम स्टे बनाना रस्ते अभी जे तठनी जे मिस्त्री अस्ते कैरीगर जन अस बोल सकते हैं ना तने आपू हिसाब है जैसे से होम स्टे बनाओ रस्ते आपू हिसाब है तने कैशे के रिस्ती है तो कुछ तनी बल कि अस्तू क्या आखता तठनी रे मैन है ना जे लोग तठनी स्थानीय मैन अस्ते जन अस लोकल तठनी मैन बोते तने आखता तने आपू कमकाज भी शुरू हो गया हो रे का जैसे जे घुमलार मैन थे तने जैसे गाइड कहीं कम कर सकते गाइड कम बोलने मतलब है कि जे मैं बहरी मैन आल तस्ते अभी तस्ते इलाके पता नहीं बोना तो तस्से जे तठनी जे कई पढ़ोर लखोर बोल जाने कम शिचोर अस्तू तसे तने बताई सकते कि हैं इस जगह जैसे फलानी चीज़ है अस्ती फलानी जगह ही अस्तू है ना फलानी जगह है मंदिर अस्ता बड़ा पुराना अस्ता है जे बनाओ रस्ता फलाने बनाओ रहा यानी जे भी तमाम जे जानकारी होती है ना जे घुमला रहते तनी के लिटू कि तस जगह एक खासियत की अस्ती है ना ता तनी जानकारी दे सकते रोजगार जैसे से कमो सकते साथ साथ से भी हाँ बड़ी गल है कि जे हैं पुरानी रीत हस्ती जे हैं पुरानी संस्कृति हस्ती है ना तैस भी बचाई सकते तैस भी जैसे बढ़ावा बदन कन्यू करी हस्ती

जैत्रु बताल है ना मैणा ते साबे से तठनी बैर गई कोड़ी जैसे डकफोख लगती कि फलाने गई नुस्तु तठनी मैने कहीं जैसे रहना बेना ही नाए तने जैसे नी संस्कृति अस्ती है ना भाले मैण अस्ते तो तमाम जे भी कसे इलाके गल बोल तसे जे है ना खारी जे जानकारी का दे सकता तठनी मैण तो जे है इको टूरिज्म अस्ती है ना ऐसा अंतर में बोलूँ कि खास करे कि बुतू क्या अखता जे तठनी रे जे तैसे इलाके जे मैन बुते हैं ना अखते तने जे संस्कृति तस बढ़ावा दे सकते बचाई सकते अपू है ना जे तटने इलाके कहीं रीत रकम है तैसे तस बचाई सकते ठीक है जे कुदरती चीज अस्ती है ना तने जे तने भी खास करें से बचाई करी थे है ना बचाई करी कई भी चीज़ इन्होंने वे कि ब्याह से तो पता अस्त शुभ आयाश इन्होंने वे कि जे हैं ईने बाड़ी पीढ़ी अस्ती कई चीज़ ही तने पता न वे भले हैं लाने चीज अस्ती भले हैं प्रणे जे खीणे पे बैड़ी चीज अस्ती है ना ब्याह भी मैं बोलूँ कि कई आओ कई घर अंतर नस्तु कि जे पुराने जने अस बोल सकते कि घोड़े बैट बन और भूते थे ना है ना नहीं कुछ बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ इसी बुरले घर अंतर जड़ी जैसे आओ भी से समाय करती है इससे तो इन्हें बड़े टाइम अंतर तेने पता नहीं मिलना को कोती थी मैं अभी ब्रह्म बता लूँ कि ऐसा अंतर की बन दूत तो तैसे जे बुते स्वाद भूतत है ना ये ब्याह भी अगर हम ग्राएं रही गल करें जे माने जे हैंड बनोर भूते तसे मनोटी बनोर भूती भूता तक खास किसमें है ना से घोड़ भूता पर नव में है ना बोलते तस की पता है बोले जय पता नहीं यार घोड़ है कहना घोड़ है पर तसे आपको कुछ खास हो तस पीठी मरने के है ना जिखें तस पुट जैसे थोथे बनते अन्य चीज ही कहें जे पुरानी चीज जिसती अन्य जैसे स्वादे अलग भूता रिश है ना गल लाने आई जैतरी बचाई करी अन्य थेल जैतरी जैसे हुरिया मठ जे हैंड गया बरसते तने बताल तैतरी से बच रहती अगर अगर तने जैसे तने फेदा है तीत रहता तो कुड़ी कुड़ी ऐसा अंतर में बोलूँ कि है अब तो कुदरती चीज़ें जे छेड़खान न करनी से बचाई करी थैन से है ना तठा जे हैं पुरानी रीत है तो से बचाई कर थैन से डकबोक हंस लाते रहते है ना टेम हंस कहीं घाट होता में इन छोटी गीत जैसे राकेश कुमार पंगवाए गल अंतर तैयार थी रिस्तू सुनते हस गीत सुने जी।

अभी आपने सुना पंगवाली कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत। कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनाते हैं लेख रामपाल की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने डीबीटी के तहत 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिमी बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्य संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को सशक्त और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाने पर बल दिया।
1: मेरा यह मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में जो अभी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए, सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही है, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें।
0: इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
2: अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई दे। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनटीए ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कांगड़ा जिला में 12 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिरमौर जिला में 3 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां 638 परीक्षार्थी नीट परीक्षा देंगे। नाहन में नियुक्त परीक्षा पर्यवेक्षक मोहम्मद रिजवान ने ये जानकारी दी।
3: हाँ, तो इस बार एनटीए ने हमारा री एग्ज़ाम के लिए हम लोग जा रहे हैं और टोटल हमारे पास नाहन में 638 कैंडिडेट्स हैं और 3 सेंटर हैं टोटल। जो भी हमारे यहाँ सीसीटीवीज हैं और जैमर्स हैं और गाइडलाइन जो एनटीए की तरफ से आई हैं वो हमने अच्छी तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
0: इसी के साथ

0: सीए समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना गया। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी के शिमला केंद्र है। संजय दे 6:05 हुए हैं। पेश है कांगड़ी कार्यक्रम।

कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो साड़ा प्यार भरा नमस्कार, हाजिर हन कांगड़ी कार्यक्रम लेकरने। आज असा कार्यक्रम च तुसा जो छैल छैल लोक गीतां सौगी तुसा कन्ने गल करनी है, जागरूकता सौगी नशे दी लत दा नाश करना, कन्ने जानकारी देनी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सौगी सौगी प्रदेश दियां नवीं ताजियां खबरां भी सुनानियां हन। पर कार्यक्रम दी शुरुआत करना लगे हन कुसुम धीमान दे गाए इस लोक गीते कन्नै।

छल दिया लोक गीत तुसें सुनेआ। हुण असें अपने श्रोतियां कन्नै गल्ल करनी है जागरूकता ते जेह्ड़ा है नशे की प्रवृत्ति जो जड़ा है घट या उस जो खत्म कियां कीता जाई सकता है। देखा संघर्ष जो मानव जीवन का दूजा ना बोलिया जाई सकता है, इस संघर्ष से आदमी कुंदन के अशुद्ध कने पवित्र बनी जाता है। जिन्हां लोगों का दिल कमज़ोर होंदा है या जिन्हां का निश्चय जड़ा है पक्का नहीं होंदा है, सह संघर्ष के अगे अपने घुटने टेकी देंदे हैं, सह अपनी असफलता से बचने लई नशे का सहारा लेंदे हैं। कहने जो तो असें बोली देंदे हैं कि असा दुख भुलाने वास्ते पीते हैं, इससे सांझो मन की शांति मिलती है, नशा करने से दुखों कने कष्टों का जड़ा है ते मुक्ति मिलती है। पर क्या सच्ची नशा करने ते आदमी दुखों से मुक्त हो जाता है? अगर दिया हुंदा तो पूरे संसार च कोई दुखी कने कुसी जो भी कुसी तरह की कोई चिंता नहीं होंदी। नशा करने वाला आदमी समाज कने राष्ट्र वास्ते बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुंदा है। कुसी पढ़े लिखे आदमी ने एक गल बिल्कुल ठीक गलाई है कि शराब पीना सारिया बुराइयां दी जड़ है। सारे शास्त्रां च भी शराब पीना पाप मन्या गया है। अज पश्चिमी सभ्यता ने नौजवाना जो जड़ा है अपनी तरफ मोड़िया है, ये सारे भलीभांति जानते हैं। देश की आबादी अज 125 करोड़ जो पार करने वाली है, इस आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवान हैं, कने ये नौजवान अज नशे की गिरफ्त जड़े हैं आते जा रहे हैं। इसका दिखा जड़े मुख्य जड़ा है इसके खास वजह क्या है, सह साढ़े मुल्क अज भी कई लोग जड़े हैं अनपढ़ हैं, कने नशे की चपेट च आए जाते हैं। ग्रां दे कम पढ़े लिखे लोग कई तरह के नशा करते हैं, कने अपने टबरे जो खत्म करी लेंदे हैं। नशीले पदार्थों की खुलेआम जड़ी है बिक्री होआ करती है। कुथू ते भी जो अज नौजवान जड़ा है इन्हां नशियां जो खरीददा है, पहले शौक दे तौर पर शुरू करता है, फिर इसका जड़ा है आदि हो जाता है। दिखा स्कूलों के बच्चे भी नशाखोर हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि घट उम्र के बच्चे जड़े है अपना रस्ता भटकी जाते हैं, कने दे लोगों दे बच्चों सौगी जड़ी

महाश्री कार्यक्रम चुनने वाले खे चंपा शर्मा रा नमस्कार भई सब जने तुसे अपने घरे ठीक ठाक रहो यही मंगल कामना भगवान आप करूँ। तो देखो आज की आसा साथी जो तुसा साथी मेरे गलबात करनी से करनी प्रकृति व संगीता रा कहाँ संबंध हो और आसा कुछ गलबात कर लेनी प्रधानमंत्री आवास योजना रे बारे दा कुछ खास खास खबरें भी उसो तुसा के लिए आई दी और साथ ही साथ ही कार्यक्रम दा मनोरंजन करना तुसा रासा लोगी दा साथी। तो देखो आसा साथी प्रकृति दा प्रकृति और संगीता रा जो एक संबंध उसो से सबसे पुराना संबंध उसो संगीत आसे हमेशा आपू साथी महसूस करो सो आसे रहे चलते फिरते आसा रहे सांस सांसा दा जो सो से संगीत बसा दा उसो सृष्टि रे शुरू दा संगीत मारे जीवना रा एक लग ना होने वाला हिस्सा उसो देखा जाओ तो हर एक तत्व संगीत में उसो कल कल कर दी नदियाँ वो या तबे संतूरा री तान छेड़ दे झरने हवा रे जो साथी साथी मदमस्त जूम दे बाग बनो या तबे फूलारी खुशबू फा मधोश गुनगुन करते भंवरे व तितलियाँ ये सभी संगीतारी एक बड़ी सुंदर सी जोशों से प्रकृति साथी संगीता के जोड़ो सो स्वर लहरियों दा इतरां दे ये सब नजर आओ सो कुछ वैज्ञानिके तो ये तेरी इशय बोलिया करो कि संगीता फा जोशो से जो इतरी विद्या हो से मारे जीवने राजो मारे दिमाग उसो मारे दिमाग बांधे सीधा असर पाओ सो संगीता री एबू तई री जो यात्रा उसो तेते दा देखने दा ए बात पूरी तरह साबित हुई गई उसो मारे शास्त्रीय रागो रा चैन जो सो से भी प्रकृति रे सुंदर रंगो रे सुंदर तरीके साथ ही करा गुआदा उसो ब्यागा गाए गाए जाने वाले जो गाने उसो या राग उसो से सांझा रे अगर राती या अगर राती गाए जाओ सो तो से राग अलग ही लगो सो और मारे जो महान संगीतज्ञ उसो से रागो रे चुनाव रे वक्ता दा जस वक्ता री तैंखे चुने दो से अगर तिस वक्ते राग नहीं गाए जाओ तो तिस वक्ते तिना रागो रे गाने व बजाने दा से राग सुनने दा इतने बढ़िया नहीं लगो सो जितने तिस रागा के अगर तिसरे रागा रे भक्ता दा गाए जाओ सो तो ये चीज़ें भी आसरे प्रकृति साथी जुड़े दे सो चुने दे भक्ता पांदे गायरो जो सो से राग बहुत अच्छे लगो सो और मना के आसरे भाओ सो यानी कि हर एक रागा रा भक्त अपने अपने भक्ता पांदे गाने बजाने रा उसो और इत पांदे दूरे तरीके साथी से गाए भी जाओ सो नहीं तो तेरा जो सो से गाने दा इतनी मिठास भी नहीं आंदी उसो इतफा साफ साफ ये पता चलो सो कि संगीता के प्रकृति और प्रकृति संगीता रा जो सो आपू बीचे गहरा संबंध हो सो जो एक दूजे फा बिना अधूरा ही हो सो जो संगीतो सो संगीत ना सिर्फ मारे जीवने के बल्कि सारी शक्ति रा एक अनूठा स्रोत हो सो मारा पूरा माध्यम कसी ना कसी तरीके फा संगीता पांदे ये आधारित हो सो संगीता दा एक नौखी शक्ति हो सो इत्ते दा अमृतत्व और चमत्कार हो सो संगीता के

भई ये सुना तुसे, लोकगीत और गाने वाले थे युवा शर्मा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो योजना सो से भारत सरकारे जो सो मानु के एक खास योजना चलाई रखी सो, जे तेरा उद्देश्य बेघर मानुओं के कच्चे मकाना तो रोने वाले री तें के पक्के घर और साफ सुथरे घर बनाना उसो। 1 अप्रैल 2016 दा शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना जो सो से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार रा एक खास कार्यक्रम उसो, जेते दा जो सो से घर और शहरी मंत्रालय द्वारा ये काम करा गुआ दा उसो। इते योजना रा जो लक्ष्य उसो से सभी जो घर आ रे भाबीना परिवार उसो और कच्चे मकान उसो जिन्हा रे मकान टूटे फूटे दे उसो तिन्हा रे तई खे रोने री तई खे परिवार के तिन्हा रे बुनियादी सुविधा साथ ही साथी एक पक्का घर देना उसो। इते योजना दा ग्रामीण आवासरी कमी खे दिखाओ सो व बार तारे ग्रामीण क्षेत्र दा आवासारी कमी खे पूरा भी करो सो। सभी रीतें खे घर बनाना इतरा इत योजना रा उद्देश्य ओसो।

अब हाथी री तैंखे सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना मापदंडों के लई रो जो सो इतदा ग्राम सभा द्वारा इतने के सत्यापित करा जाओ सो जो इतरी राशि मिलो सो तेरा सीधा लाभ जो सो से अभ्यर्थी के आधार साथी लिंक्ड जो बैंक खाता हो सो या डाकघर अदा जो सो से तिथा इतरा तेतदा इनारा पैसा जाओ सो और इत योजना के जो सो से प्रधानमंत्री गरीब माणू री तैंखे चलाई रखा हो सो ये जो योजनाओं सो ग्रामीण क्षेत्र रे कच्चे और टूटे फूटे दे घर अदा रहने वाले परिवार के तिना के सुविधा देना और पक्का घर बनाना हो सो और एकदम तेरा जो उद्देश्य हो सो से 2016-17 फाजू 2018-19 तक के 3 साल फाजू ग्रामीण गाँव रे क्षेत्र का जो सो मानू तीना परिवार के एक अच्छा घर देना हो सो जो कि इतने का जो लाभ लेने वाले उसो से अगर मैदानी क्षेत्र रहे उसो तो तीन री तैंखे 1,20,000।

सरकारी तैंखे ए लाभ मिलना सो और आय वर्गारे मुताबिक होम लोन सब्सिडी और आवासीय जमीना दा अपनी जमीना दा घर बनाने री तैंखे तिना के 2.5 लाख री तई सहायता भी दे जानी सो। ये जो योजना सो से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दा इतेरा जो सो से परिवार के लाभ दे सो और इते योजना के जो पैसे री सहायता भी दी जाओ सो और अपने जो ग्रामीण क्षेत्र का माणू रहो सो अगर तिना के इतर योजना का लाभ लेना हो तो सो अपने पंचायत सचिव विकास अधिकारी या नेड़े रे किथे भी कॉमन सर्विस सेंटर का जाइरो संपर्क कर सको और इते योजना रा जो सो से सब जने लाभ ले सको सो।

ये सुना तुसे लोकगीत और गाने वाले थे संतराम शर्मा। तो अभी कुछ खास खास खबरें भी उस समय गा के तुसर देखे। पहली खबर उस कल दुनिया भर का 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था रे तई योग ओ जो सभी उम्र रे तई योग महत्व पाते जोर दे। उस संस्कृति मंत्रालय भारतारी सामूहिक सांस्कृतिक विरासत व योग परंपराओं के दिखाते हुए देश भर का 100 स्थानों का खास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करना। उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का खास समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का कोलकाता रे ऐतिहासिक रेड रोड़ा का आयोजित करा जाना। आयुष मंत्रालय का बताया कि भारतीय मंत्रालय बताया कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद व विदेशों का रोने वाले भारतीय दूतावासों रे समन्वित प्रयासों का इस साल विश्वभर का लगभग 2500 स्थानों का योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करा जाना। उसो इन कार्यक्रम का 210 से ज़्यादा भारतीय दूतावासों की भागीदारी सामूहिक कल्याण री तैंखे एक वैश्विक आंदोलन रे रूपा दा योगारी भूमिका के दिखाओ। सो अगली खबर सो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोलिया कि आने वाले वक्ता दा चुनौतियों फा निपटने री तैंखे लोक निर्माण विभाग के सशक्त व तकनीकी पांदे आधारित कार्य प्रणाली अपनाना जरूरी हो। सो आज शिमले दा लोक निर्माण विभाग दा गुणवत्ता आश्वासन विषय दा आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद सत्रारी अध्यक्षता करते हुए तिने ए बात बोली कि मुख्यमंत्री पिछले 3 साल फा हिमाचल दा कई प्राकृतिक आपदाओं रा सामना करा और तेस वक्ते लोक निर्माण विभाग री भूमिका ज़्यादा सराहनीय रही। उसो आखिरी खबरों समय गागे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA री कल होने वाली नीट UG दूजी बारी परीक्षा री तई सभी तैयारी पूरी करी गई। NTA एक वक्तव्य दा बोलिया कि दोबारा परीक्षा देशा रे 551 शहरों दा विदेशों रे 14 शहरों दा संचालित करे जाने 22,79,000 फा ज़्यादा विद्यार्थी एते दा भाग लाना। एती प्रदेशा दा भी कई स्थानों दा नीटा री परीक्षा रे आयोजना के लई रो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करी। कांगड़ा जिला दा 12 परीक्षा केंद्रों दा इस परीक्षा का आयोजन करा जाना। उपायुक्त हेमराज बताया कि परीक्षा केंद्रों का सुरक्षा व्यवस्था बनाई रो रखने री तैंखे पुलिस कर्मचारियों साथी इस बारी ITVP री सेवाएं भी लई जानी। तिने बताया कि परीक्षा केंद्रों का CCTV कैमरे व जैमरा भी लगाए जाने। उसो ये थी कुछ खास खास खबरें। तो जानते जानते ऐसे एक लोकगीत तई सुन लो मैं।

महाश्वी कार्यक्रम के साथ ही हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 होने वाले हैं। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: इस कारण से ये खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी दाल बहुत अच्छी बनती है और इसमें सख्त दाने नहीं होते। ये पीली मोजैक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है और पत्तों की बीमारियों के प्रति सहनशील है। ये लगभग 85 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसतन उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग हो सकती है।
1: जी राजेंद्र जी, बात करते हैं SML के बारे में, जिसे 668 के नाम से भी जाना जाता है। मूंग की यह ग्रीष्मकालीन किस्म है। हिमाचल के ये सम पर्वतीय और निचले पर्वतीय सम उष्ण कटिबंध वाले सिंचित क्षेत्रों में आलू या अदरक की फसल के बाद उगाई जाती है। इस किस्म को गन्ने के साथ मिश्रित रूप में भी उगाया जा सकता है। इसकी बिजाई का समय जून का दूसरा पखवाड़ा होता है, यानी कि आजकल इसका समय चला हुआ है। इसकी फलियां लंबी गुच्छों में लगने वाली, दाने इसके मोटे होते हैं, हल्के हरे रंग की ये होती है और स्वादिष्ट होती है। ये किस्म लगभग 75 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह श्याम वर्ण धब्बा, एंथ्राकनोज, सर्कोस्पोरा पत्ता धब्बा रोग और पीली मोजेक के लिए प्रतिरोधी किस्म मानी गई है। इसकी उपज लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसान और बागवान भाई बहन ले सकते हैं।
0: जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने वाली दलहनी फसलों में योगिता जी मूंग का विशेष महत्व है। शाकाहारी भोजन में मूंग की दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी है। मूंग की दाल अपनी उत्कृष्ट पौष्टिकता के लिए संपूर्ण भारत में भी लोकप्रिय है। मूंग की दाल का छिलका दुधारू पशुओं की दूध उत्पादक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। मूंग का पौष्टिक भूसा पशुओं को चारे के रूप में भी खिलाया जाता है। मूंग की फसल अपनी जड़ों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का यौगीकरण करके खेतों को दोबारा उपजाऊ बनाने में भी सहायक सिद्ध होती है। अगर बात करें खेत की तैयारी की योग्यता जी, तो बुआई से पहले खेत अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। खेत में उचित नमी होने पर बुआई करनी चाहिए। भुरभुरे बारीक और चुड़ैल खेत को मूंग की खेती के लिए अच्छा माना गया है। खेत की 2 से 3 बार जुताई करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, जिससे भूमि की नमी संरक्षित बनी रहती है। सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों में खेतों की मेड़बंदी करके वर्षा के पानी को बहने से रोकना चाहिए, जिससे वर्षा जल का अधिकांश भाग मिट्टी अच्छी तरह से सोख ले, क्योंकि अधिकतर किसान वर्षा की नमी पर ही मूंग की बुआई करते हैं।
1: किसान भाइयों, ये तो बात हुई खेत की तैयारी के बारे में। बात करते हैं मूंग के बीज की मात्रा के बारे में। वसंत कालीन ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, जबकि खरीफ ऋतु की फसल के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। ग्रीष्मकालीन मूंग की पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और वर्षा ऋतु की फसल में पौधों की अधिक बढ़वार को देखते हुए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। पंक्तियों में पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और बुवाई हमेशा पंक्तियों में ही करनी चाहिए, जिससे फसल की निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है। मूंग को मक्का, गन्ना और कपास के साथ मिश्रित या अंत फसल के रूप में उगाने पर इसका 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
0: देखिए, बिजाई तो हो गई, पर उससे पहले हमें बीजोपचार भी करना है। योगिता जी, बीज बोने से पहले हमें फफूंदनाशक दवा से बीज को उपचारित अवश्य करना है। इसके लिए फफूंदी नाशक दवा बविस्टीन 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपने प्रयोग करना है। इसके बाद बीज को राइजोबियम जीवाणु से उपचारित करना अति आवश्यक रहता है। इससे फसल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगीकरण क्रिया का अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। बीज उपचार बुआई के 10 से 12 घंटे पहले आपको कर लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई करने के लिए राइजोबियम जीवाणु के 2 पैकेट पर्याप्त रहते हैं। राइजोबियम उपचार के लिए 1 लीटर पानी में 125 ग्राम गुड़ और 2 ग्राम गोंद को अच्छी तरह उबाल लेना है। इसके बाद ठंडा होने पर इस घोल में राइजोबियम के 2 पैकेट को आपको मिलाना है। इस प्रकार बनी लई को बीज के साथ अच्छी तरह आपको मिलाना है, जिससे बीज के चारों ओर लई की एक महीन सी परत बन जाती है। इसके बाद बीज को छाया में सुखा लें। ध्यान ये रखें कि बीज को कभी भी धूप में ना सुखाएं।
1: जी राजेंद्र जी, बात करें अगर खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। खेत की मिट्टी की जांच के बाद ही खाद एवं उर्वरकों की मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मूंग की फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस व

0: पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय प्रयोग करनी चाहिए। राइजोबियम जैविक उर्वरक के प्रयोग द्वारा मूंग की पैदावार में 15-20% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जीवाणु उर्वरक सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनका प्रयोग भी सुगम है। फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बारानी व कम पानी वाले क्षेत्रों में फास्फोरस का प्रयोग करने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाती है, जिससे पौधे गहराई से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकते हैं और मूंग की खेती में उत्पादन लागत कम करने के लिए फास्फेट घुलनशील जीवाणु का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए PSB का 500 ग्राम का एक पैकेट प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
1: जी हाँ, बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो योगिता जी, मूंग की फसल में पानी की कम आवश्यकता रहती है। वर्षा ऋतु में यदि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो अच्छी पैदावार लेने के लिए हल्की आप सिंचाई कर सकते हैं, और अनावश्यक रूप से सिंचाई करने पर पौधों की वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होती है, जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। सिंचाई जरूरत के अनुसार और हल्की करें। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए 3-4 सिंचाई ही करें। खरीफ की फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था करें।
0: किसान श्रोताओं, बात करें अगर खरपतवार नियंत्रण की। किसान श्रोताओं, खरीफ की ऋतु की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है। सामान्य तौर पर फसल की वृद्धि के साथ ही कई प्रकार के चौड़ी व संकरी पत्तियों वाले खरपतवार उग जाते हैं, जो फसल को दिए गए पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण कर लेते हैं, जिसमें मूंग की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इस प्रकार किसान को अपनी फसल का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता और बुआई के प्रथम 20 से 25 दिनों में खरपतवार फसल से ज्यादा स्पर्धा करते हैं। इसलिए बुआई के 15 से 20 दिनों के अंदर कसोले से निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को नष्ट कर दें। आजकल निराई गुड़ाई के लिए मजदूरों की कम उपलब्धता और उनकी अधिक मजदूरी के कारण खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए बहुत से शाकनाशी बाजार में उपलब्ध है। मूंग की फसल में प्रभावी तरीके से खरपतवारों की रोकथाम के लिए 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बासालिन नामक दवा को 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई से पहले छिड़काव करें। छिड़काव के तुरंत बाद शाकनाशी को भूमि की ऊपरी सतह में अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद मूंग की बुआई आप कर सकते हैं।
1: जी हाँ, बात करते हैं प्रमुख कीटों और उनके नियंत्रण की। तो योगिता जी, मूंग की फसल में लगने वाले कीटों में थ्रिप्स, श्वेत मक्खी और जैसिड प्रमुख है। इन कीटों से फसलों को बचाने के लिए मेटासिस्टॉक्स 2 मिलीलीटर या मोनोक्रोटोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फली बनने से पहले छिड़काव किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 700-800 लीटर घोल पर्याप्त रहता है। तो देखिए योगिता जी, ये तो बात हुई ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन की। तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का। तो आइए सुनते हैं सहगान।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये सहगान। और किसान भाइयों, अब समय हो गया है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है घरेलू स्तर पर फल एवं सब्जियों का परिरक्षण। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर महेंद्र पाल गुप्ता और उनसे बातचीत करेंगे दिनेश। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं ये जानकारी पूर्ण बातचीत।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर महेंद्र पाल गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए जो विषय लेकर आए हैं, घरेलू स्तर पर फल व सब्जियों का परिरक्षण। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि घरेलू स्तर पर फल और सब्जियों का परिरक्षण है, उसमें फल परिरक्षण क्या है और इसके क्या उद्देश्य है?
2: मैं बागवानों को बताना चाहूँगा कि फल परिरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका मेन जो परिभाषा है वो है कि फल व सब्जियों को इस प्रकार से इनके पदार्थ बनाकर संरक्षित करें ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो सके, उसमें किसी प्रकार का विकार ना आए और वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित हों। जो इनका उद्देश्य था उद्यान विभाग का, जो किसान व बागवानों का आवश्यकता से अधिक फल व सब्जियां पैदा होंगी या बाजार में उनका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा, उनका विधायन किया जाए ताकि किसानों को जो इसका नुकसान ना हो, फल पदार्थ भी उचित दर में उपलब्ध हों। और इसका दूसरा उद्देश्य था महिलाओं को घरेलू स्तर पर फल परिरक्षण में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना।
1: जी, और डॉक्टर साहब, ये फल और सब्जियों के परिरक्षण की क्यों आवश्यकता है?
2: जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है,

0: कृषि वैज्ञानिकों और बागवानों की मेहनत से हरित क्रांति आई है। हिमाचल प्रदेश भी एक प्रमुख फल उत्पादकों में गिना जाता है
1: जी।
0: लेकिन जितना भी फल उत्पादित होता है उसका लगभग 20% के दाम उचित मात्रा में नहीं मिल पाते, जिसका मुख्य कारण होता है उसका आकार ठीक नहीं है या उसका रंग ठीक नहीं है, लेकिन पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती। और यदि इनका विधायन किया जाए, उनको परिरक्षण किया जाए, तो इससे ना ही किसानों का नुकसान होगा बल्कि उनकी आर्थिकी भी इससे सुदृढ़ होगी
1: जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये फल और सब्जियों के खराब होने के मुख्य कारण क्या है।
0: ये आपने दिनेश जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जो सामान्य दशाओं में फल वो सब्जियां लंबे समय तक नहीं रह सकती
1: जी।
0: और ये खराब होने लगती हैं, जिसका मुख्य कारण है एंजाइम्स, क्योंकि फलों और सब्जियों में एंजाइम्स की मात्रा जो होती है वो उनको खराब करती है। और दूसरा कारण है सूक्ष्म जीव
1: जी।
0: जो एंजाइम्स है, एक्चुअली ये एक रसायन है जो प्रत्येक जीवित वस्तु में पाया जाता है और हमारा भोजन भी एंजाइम के कारण ही पचता है। लेकिन यदि गृहिणियों ने देखा होगा, जब हम कभी कोई सब्जी को काटते हैं तो वो ब्राउन होने लग जाती है, और इसमें वो जो ब्राउन होती हैं ये एंजाइम के कारण ही होती हैं और ये खराब होने शुरू हो जाती है। यदि इन सब्जियों को उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट उबाल लें तो एंजाइम जो है निष्क्रिय हो जाते हैं और फल जो सब्जियां हैं वो खराब नहीं होती
1: जी।
0: दूसरा जो कारण है वो है सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव है ये हवा, पानी और इसमें मिट्टी में होते हैं, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। अब सूक्ष्म जीव जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे खमीर, फंगस और जीवाणु। तो इन जीवाणुओं को भी मारने के लिए या तो हमें उबलते हुए पानी में जो खटास रहित जो है हमारे जैसे सब्जियां हैं उनको हमें प्रेशर कुकर में उबालना पड़ता है, ताकि जो जीवाणु हैं वो प्रेशर कुकर में वो मर जाएं
1: जी।
0: मैं खमीर के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो खमीर है ये जो है एक प्रकार का वनस्पति है, इसको पैदा होने के लिए चीनी की आवश्यकता पड़ती है
1: जी।
0: और ये जो है एक्चुअली जो है 15 से 20% चीनी के घोल में ये बहुत उगता है
1: जी।
0: गृहिणियों को पता है कि खमीर हालांकि एक लाभदायक सूक्ष्म जीव है जो कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है या जो ये वाइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लेकिन यदि चीनी की मात्रा 65% या इससे ऊपर है तो उसमें जीवाणु नहीं पनपते। इसी प्रकार जो फंगस है, फंगस से बचाने के लिए हमें फल पदार्थ या जो सब्जियां हैं हमारी, इनको जो हमें नमी से दूर रखना होता है, क्योंकि अगर हम इनको नमी में रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाती है। और जो जीवाणु है को मारना पड़ता है, ये हवा में बहुत होते हैं, इनको मारने के लिए जो हमारे फल या सब्जियां हैं, फलों के लिए तो हमें उबलते हुए पानी में हम इनको मार सकते हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं ये भूमि के नज़दीक पैदा होती हैं और इनको जो हमें प्रेशर के अंदर जो है इनको मारना पड़ता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति को दैनिक आहार में कितना फल और सब्जियां लेनी चाहिए?
0: मैं हिमाचल वासियों को बताना चाहूँगा या जो किसान और बागवान भाई है, आजकल जो है इनकी भाग दौड़ इतनी होती है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं
1: जी।
0: इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में कम से कम 55 से 60 ग्राम फल
1: जी
0: व 250 ग्राम से 300 ग्राम तक सब्जियां लेना आवश्यक है, क्योंकि इन फलों और सब्जियों में रेशा अधिक पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है
1: जी।
0: तथा इससे हमारी आंतों को भी बल मिलता है। इसके अलावा इनमें बहुत से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन इत्यादि प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं तथा रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि फल परिरक्षण के क्या क्या तरीके हैं?
0: ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेन जो हमारा घरेलू स्तर पर जो हमें तरीके हैं, मैं उन्हीं तरीकों के बारे में महिलाओं को या किसान बागवानों को बताना चाहूँगा जो वो घरेलू स्तर पर बना सकते हैं
1: जी।
0: जो फल परिरक्षण के तरीके हैं ये 2 भागों में इनको बांटा गया है, अस्थाई फल परिरक्षण और स्थाई फल परिरक्षण। तो जो अस्थाई फल परिरक्षण है इसमें जो है जब हम इसको अस्थाई फल परिरक्षण करते हैं तो ये कुछ दिनों तक ही हमारे जो पदार्थ रह सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं, लेकिन स्थाई फल परिरक्षण में हमें जो है 2 से 3 साल तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं
1: जी।
0: तो जिस तरह ये

0: अस्थायी फल परिरक्षण है हमारा। इसमें जो है नंबर एक में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह संक्रमण से बचाव अगर हम फल और सब्जियों को करें, अर्थात फलों और सब्जियों की तुड़ाई इस हिसाब से करें कि उसमें किसी प्रकार की चोट ना लगे, जो उसका छिलका है वो उसी तरह रहना चाहिए। यदि छिलके को थोड़ी सी चोट भी लग गई तो वो दूसरे फलों को भी खराब कर देता है, इसलिए इसको संक्रमण से बचाना है और ये हमारा जो है एक तरह का अस्थाई फल परिरक्षण हो जाता है
1: जी।
0: दूसरा जो है हमारा जो फल वो सब्जियां हैं, ज्यादा तापमान पर जो फल और सब्जियां खराब जल्दी शुरू हो जाती हैं, इसलिए फल वो सब्जियों को यदि हम कम तापमान रखें अर्थात फ्रिज में रखें तो 4 से 5 दिन तक हम उनका अस्थाई परिरक्षण कर सकते हैं। इसी तरह फलों और सब्जियों में जो हम पदार्थ बनाते हैं उसमें अगर हम कम मात्रा में मसाले या नमक डालें तो हम 4 या 5 दिन के लिए अस्थाई परिरक्षण कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन जो हमारा कार्य है वो है स्थाई फल परिरक्षण
1: जी।
0: तो जो स्थाई फल परिरक्षण है ये जो है हमारा फल व सब्जियों पर निर्भर करता है कि हमने किस फल व सब्जी का पदार्थ बनाना है
1: जी।
0: जैसे विभिन्न जो हम पदार्थ बना सकते हैं फलों से स्क्वैश बनाना, जैम बनाना, चटनी, अचार, ये हम घरों में पदार्थ बना सकते हैं। और इसके जो मुख्य तरीके हैं वो है सबसे पहले चीनी द्वारा फल पदार्थ बनाना, उनको परिरक्षित करना। जिस तरह हम जैम बनाते हैं जैम में चीनी की मात्रा 65% से ज़्यादा होती है और इसमें किसी प्रकार का अन्य कोई दवाई नहीं मिलाई जाती और ये चीनी द्वारा सुरक्षित किया जाता है
1: जी।
0: आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये हमारे जैम या जो मुरब्बे बाजार में बिकते हैं ये 2 से 3 साल पुराने भी होते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता
1: जी।
0: इसी तरह हमारा जो दूसरा तरीका है वो है नमक द्वारा जो हम अचार सुरक्षित करते हैं, जिसमें यदि नमक की मात्रा 15 से 20% होगी तो वो उसमें जो है जीवाणु नहीं पनपते और अचार हमारा सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि 15% से कम नमक होगा तो उसमें अचार जो है हमारा खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो हम फल परिरक्षण का जो मेन है हमारा वो है केमिकल के द्वारा या रसायन के द्वारा। हमारी जो फूड इंडस्ट्री है या जो हमारे फल विधायन इकाइयां हैं इसमें सिर्फ 2 प्रकार के रसायन इस्तेमाल करने की इजाज़त है
1: जी।
0: उदाहरणार्थ पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइड जिसको हम KMS भी बोलते हैं, इससे हम स्क्वैश को सुरक्षित करते हैं
1: जी।
0: यदि हम 1 लीटर स्क्वैश बना रहे हैं तो उसमें 750 मिलीग्राम KMS की मात्रा इस्तेमाल करनी है और उसमें जो है स्क्वैश बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है, 2 से 3 साल तक उसमें कोई विकार नहीं आता और वो स्थाई परिरक्षित हो जाता है। और जो दूसरा रसायन है वो है सोडियम बेंजोएट जो कि हम अचार और टोमेटो केचप में इस्तेमाल करते हैं। अचार में इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम प्रति किलो अचार रहती है
1: जी।
0: और यदि किसी ने टोमेटो केचप या टोमेटो चटनी या टोमेटो प्यूरी बनानी है तो उसमें 700 मिलीग्राम प्रति किलो टोमेटो केचप के हिसाब से इसको मिलाया जाता है और ये 1 से 2 साल तक सुरक्षित रहता है और इस प्रकार ये स्थायी रूप से परिरक्षित हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब उद्यान विभाग फल परिरक्षण को प्रोत्साहित देने में क्या क्या सहायता दे रहा है?
0: उद्यान विभाग फल परिरक्षण के प्रोत्साहन देने के लिए गांव-गांव में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो कि 1 दिवसीय या 2 दिवसीय 3 दिवसीय होते हैं और उन्हें वहां पर मौके पर ही फल पदार्थ बनवाकर दिखाए जाते हैं ताकि वो इन्हें इसके बारे में उन्हें जानकारी हो। फिर भी यदि किसी गृहिणी को इन प्रशिक्षण शिविरों में कई बार समझ नहीं आती तो किसान बागवान या गृहिणियाँ हमारे उद्यान विभाग के जो हमारे फल विधायन की इकाइयां हैं उनके जो प्रभारी हैं उनसे संपर्क स्थापित कर सकती हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा जो केंद्रीय प्रायोजित हमारी योजनाएं होती हैं उसमें एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत भी खाद्य प्रसंस्करण में अनुदान दिया जाता है जो कि मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है या इसकी सीमा जो है वो है 4 करोड़ का अनुदान होता है। लेकिन यदि किसी ने कम प्रोजेक्ट का कोई घरेलू स्तर पर उद्योग लगाना हो तो उसमें 50% का अनुदान विभाग देता है
1: जी।
0: और यदि किसी पुरानी इकाई ने उसमें कोई सुधार करना है उसके लिए भी 50% का अनुदान इसमें उपलब्ध रहता है। इसके अलावा मैं किसान बागवानों या जो भी इसमें फल परिरक्षण में रुचि रखता हो वो अधिक जानकारी यदि उसे चाहिए तो वो

0: उद्योग विभाग से भी संपर्क स्थापित कर सकता है, क्योंकि इस विभाग में भी कई योजनाएं फल परिरक्षण के इसमें उद्योग लगाने के लिए चली रहती हैं, और वो भी ज़्यादा जानकारी जिला के जो उद्योग केंद्र है वहाँ पर उनके कार्यालय में जाएं और उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, घरेलू स्तर पर फल पदार्थ बनाने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है?
0: इसमें जो है घरेलू स्तर पर जो दो तीन की इसमें आवश्यकता है, जिस तरह साला पीसने की मशीन एक घरेलू स्तर पर होनी चाहिए, इसी तरह एक स्टील का सूप स्ट्रेनर होना चाहिए, स्टील की छलनी हो, एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन हो, बोतल साफ करने के लिए ब्रश हो, लकड़ी की उसमें एक कर्ची हो जो लकड़ी के बनी हो।
1: जी,
0: इसके अलावा जो हम इसमें सामग्री इस्तेमाल करते हैं वो जो है साइट्रिक एसिड है, एस्टिक एसिड, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, विभिन्न प्रकार के फलों की खुशबू या जो हमारे खाद्य रंग हैं जो इस्तेमाल यदि करने हों तो उनको हमें ज़रूरत पड़ती है। और मैं गृहिणियों को और किसान व बागवान भाइयों को यह भी बताना चाहूँगा कि ये उपकरण या ये जो हमारी सामग्री है ये आम दुकानों पर नहीं मिलती, और ये चंडीगढ़ में 20 सी सेक्टर जो है हमारा मार्केट है वहाँ पर दुकानें हैं, वहाँ से इन साइनों को या इन सामग्री को वे प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को जो घरेलू स्तर पर फल और सब्जियों का परिरक्षण करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं गृहिणियों को यह भी बताना चाहूंगा कि कई गांव-गांव में जिस तरह गलगल है उसकी अगर उन्हें कीमत अच्छी नहीं मिलती, वो घरों में इसका जो है रस निकाल कर इसमें अगर वो 3 ग्राम 1 किलो जूस में मिला लिया जाए पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड को, और उसको एक जो प्लास्टिक की कैन होती है उसमें सुरक्षित कर लें, और जब इसकी आवश्यकता पड़े गृहिणी को किसी ने कोई खट्टी सब्जी बनानी हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों के सीजन में मौसम में कुछ स्क्वैश बनाना हो तो उसमें उस रस को इस्तेमाल कर सकती है।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर महेंद्र पाल गुप्ता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए घरेलू स्तर पर फल व सब्जियों का परिरक्षण के बारे में जानकारी दी। इस सब जानकारी के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था घरेलू स्तर पर फल एवं सब्जियों का परिरक्षण। डॉक्टर महेंद्र पाल गुप्ता से बातचीत कर रहे थे दिनेश। हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो कार्यक्रम में अब समय हो चला है मनोरंजन का,
3: तो किसान भाइयों आइए सुनते हैं रीना ठाकुर की आवाज में ये प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में समय हो चला है कल के आकर्षण का।
1: किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत आपको जानकारी देंगे फसल सुरक्षा यंत्रों का रखरखाव। इसके साथ ही पहाड़ी लोकगीतों से आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा और आपको जानकारीपूर्ण बातचीत भी सुनाई जाएगी।
0: जी, तो योगिता जी घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: अभी आपने सुना कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ है आप।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुना जा सकता है। ये समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध रहेंगे।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल

0: आदर्श के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि की हस्तांतरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। नीट यूजी पुनः परीक्षा कल। देश भर के 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी लेंगे भाग, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। उन्होंने डीबीटी के तहत 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के वैश्विक उत्सव में सहभागिता निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भविष्य में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। आज शिमला में लोक निर्माण विभाग में गुणवत्ता आश्वासन विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और इस दौरान लोक निर्माण विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है।
3: मेरा यह मानना है कि पीडब्ल्यूडी जो हिमाचल प्रदेश में है, जो अभी अपनी 70% कार्य और एनर्जी सड़कों पर लगाता था, भविष्य में हमारी सरकार ये प्रयास करे कि पीडब्ल्यूडी विभाग टनलिंग भी बनाए, रोपवेज भी बनाए, सड़क तो बनाते ही है, पुल तो बनाते ही, उसमें तो उनकी एक्सपर्टीज है, और डैम बनाने के दृष्टिकोण से भी पीडब्ल्यूडी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें।
2: इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्षमता निर्माण और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सतत विकास की दृष्टि से कार्य करना अनिवार्य है। संवाद सत्र में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों व अभियंताओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता में एक रूपता के दर्शन करवाता है। शिमला स्थित लोकभवन में पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष मिलन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विभिन्न राज्यों की विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहर, मूल्यों और परंपराओं से युवाओं को जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। NTA ने एक वक्तव्य में कहा है कि पुनः परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में संचालित की जाएगी। इसमें 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नीट परीक्षा का बार बार लीक होना देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसकी गहन व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट देने वाले छात्रों के लिए HRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है।
3: नीट का पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चे हमारे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मैं पेपर देने के बाद एक

0: हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट देने वाले छात्रों के लिए एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है।
1: नीट का पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चे हमारे नीट के एग्जाम में बैठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि मैं पेपर देने के बाद एक एग्जामिनेशन पास करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही लीक हो रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकारें थे कभी भी इस प्रकार के कोई पेपर लीक नहीं हुए। ये कहीं ना कोई बड़ी गलती है। हमने नीट के हिमाचल के बच्चे हैं, हमने ये कहा कि बार बार किराया क्यों खर्च करें, हिमाचल के बच्चों को आने जाने का पूरा फ्री में उनको सुविधा उपलब्ध करवाएं।
0: इस परीक्षा के लिए कांगड़ा जिला में स्थापित 12 परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारियों के साथ इस बार आईटीबीपी की सेवाएं भी ली जाएंगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे।
2: कल नीट का जो री एग्जाम होने वाला है जिला कांगड़ा में 12 सेंटर्स में होने वाला है, तो उनसे रिलेटेड जो हमारी तैयारी है की पूरी एंड टू एंड प्रोसेस को हमने चेक कर लिया और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो भी हमने डिप्लॉय कर, जम सेंटर्स पे जैमर्स की हमने वहाँ पर इंस्टॉलेशन करवा दी है ताकि एग्जाम कंडक्ट कराने में किसी तरीके की कोताही किसी तकलीफ से ना आए।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आने वाली राज्य सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि कर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं पर ईंधन व बिजली खरीद समायोजन अधिभार के रूप में प्रति यूनिट 33 पैसे बढ़ाकर हर उपभोक्ता पर औसतन लगभग 125 रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रदेश में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। यह विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे और इसमें हजारों लोग योगासन करेंगे। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पारदर्शिता और सुशासन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पहचान है। आज नाहन में विकसित भारत सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यूपीए सरकार घोटालों के लिए जानी जाती थी, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
3: अब हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष की तुलना किसी भी पुरानी कांग्रेस जनित सरकारों से करते हैं तो हमें एक अलग चित्र दिखाई देता है। 2004 से लेकर के 2014 तक सोनिया जी के नेतृत्व वाली सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और पूरे 10 साल तक पूरे देश भर में घोटालों की चर्चा, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले। और मोदी जी का कार्यकाल एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का कार्यकाल।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को कर्ज और निजीकरण की राह पर धकेला है। एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने नियमित खर्चों के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार संस्थानों को मजबूत करने के बजाय निजी हाथों में देने की योजना बना रही है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरडीजी बंद करवाकर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने कहा कि केंद्र ने केंद्रीय योजनाओं को दिए जाने वाले फंड में भी कटौती की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितैषी है और ओपीएस देकर ऐतिहासिक कदम

0: पाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त की जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि की हस्तांतरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। नीट यूजी पुनः परीक्षा कल। देश भर के 22,79,000 से अधिक विद्यार्थी लेंगे भाग। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वायदे पूरा ना कर लोगों से विश्वासघात करने का लगाया आरोप। और दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर के अणु में होगा आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी की कुछ पंचायत नगर निगम परिषद वार्डों के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु इच्छुक स्थानीय महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों का ब्यौरा इस प्रकार है। आंगनवाड़ी केंद्र छनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, धारठा पड़वाहन में आंगनवाड़ी सहायिका का, आंगनवाड़ी केंद्र मांथला में आंगनवाड़ी सहायिका का, मसवाड़ में आंगनवाड़ी सहायिका का, अपर सोहड़ा में आंगनवाड़ी सहायिका, सियोग में आंगनवाड़ी सहायिका, खनाहर में आंगनवाड़ी सहायिका और शिवा एक में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद भरने हैं। इन पदों के लिए पात्रता इस प्रकार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र है। प्रार्थी की आयु अधिसूचना जारी होने की तारीख को 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी का नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे परिवार की सूची में दर्ज होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित निम्नलिखित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित दिनांक 4/7/2026 तक कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवाएं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष श्रृंखला। इसके तहत पेश है केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर डॉ. राजीव भारद्वाज लोकसभा सांसद से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के पर भी सुना जा सकता है और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं संजीव
5: और मैं जितेंद्र
4: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। सरकार द्वारा बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ देश और प्रदेश के हर आयु वर्ग के व्यक्ति ले रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद है कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री राजीव भारद्वाज। महोदय, आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, केंद्र सरकार के 12 वर्षों को यदि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण आप किन योजनाओं को मानते हैं?
6: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
5: कि आज आकाशवाणी में मुझे अपने विचार रखने का सौभाग्य आपने प्रदान किया। मोदी जी का 12 वर्ष का शासनकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अमृत काल के रूप में जाना जाएगा आने वाले समय में। 2014 से लेके अभी तक 2026 तक मोदी जी ऐसी ऐसी योजनाएं देश के जनमानस के लिए लेकर आए और विशेषकर हिमाचल प्रदेश, तो एक हिमाचल के प्रति उनका एक विशेष लगाव सर्वविदित है और उन्होंने जो जो योजनाएं लेकर आए उसका हिमाचल प्रदेश के ऊपर व्यापक असर हुआ। मैंने कहा कि हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ की जो आय बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य लिया था कि गरीब के सर पे छत होनी चाहिए
6: जी,
5: और वो छत भी पक्की छत होनी चाहिए। उसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश को कितना लाभ मिला है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहले पंचायतों में जब पूर्ववर्ती सरकारें थी तो गरीबों के लिए एक पंचायत में दो तीन, बहुत अधिक कोशिश कर लेंगे तो चार घर आते थे। आज आप आंकड़ा उठाकर देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश का पंचायतों का, एक एक पंचायत में 150-150-200-200 घर
6: जी बिल्कुल।
5: और ये स्थिति ये हो गई है कि आने वाले 2-3-4 सालों में हिमाचल प्रदेश में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके पास पक्की छत है। केवल छत नहीं है, बढ़िया घर है, साथ में इज्जत घर भी है। और उसके बाद दूसरी योजना जो मैं कहना चाहता हूँ, इज्जत घर जिसका मैंने नाम लिया, टॉयलेट्स। हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह थी कि हमारी जो माताएं बहनें हैं या तो सूरज उगने से पहले शौच खुले में जाती थी, खुले में शौच था, या फिर दिन छुप जाने के बाद जाती थी। ये स्थिति थी हिमाचल प्रदेश की
6: जी।
5: और आज आप देखिए हर गरीब के घर के साथ इज्जत घर है, बढ़िया मकान दिया है। ये मैं समझता हूँ कि मोदी जी का सबसे बड़ा वरदान है इस प्रदेश की भी नहीं देश की मातृशक्ति के लिए। इज्जत से जीना सिखाया अगर किसी ने है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिखाया
4: जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई योजनाओं ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा। हिमाचल में इसका प्रभाव आपको किन क्षेत्रों में सबसे अधिक दिखाई देता है?
5: मैंने कहा कि ये जो 12 वर्ष का सुशासन का जो काल है, मैं तो इसको इस देश का अमृत काल मानता हूँ, स्वर्णिम काल मानता हूँ। और मोदी जी की कोई योजना उठाकर देख लीजिए, उस योजना की विकास की धारा गांव और गरीब की झोंपड़ी तक जाती है। और उसके लिए दूसरी योजना मैं जो गिनाना चाहता हूँ वो भी प्रदेश की मातृशक्ति के लिए, उज्ज्वला योजना। हिमाचल प्रदेश में चूल्हे में रोटी बनाई जाती थी, और मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि चूल्हे में जो लकड़ी का जो धुआं है उससे आंख, फेफड़े डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। और एवरेज घर की जो गृहिणी है दिन के 12 घंटे में 8 घंटे उस धुएं के सामने बैठती है। सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, उसके बाद पति को तैयार करके काम पे भेजना है, उसके बाद दोपहर को आके शाम की चाय बनानी है, उसके बाद रात की रोटी बनानी है। तो एवरेज 8 घंटे गृहिणी लकड़ी के धुएं के सामने बैठती थी और उससे आंख की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, ये जो सर्वे हुआ था देश की और हिमाचल प्रदेश की, 70% जो महिलाएं हैं वो आंख की बीमारी से और फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थी। मोदी जी ने विचार किया, उज्ज्वला योजना लेकर आए, हर घर में गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर। उसके बाद जो सर्वे हुआ है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50% इन दो बीमारियों में कमी आई है। उसका यदि सीधा सीधा श्रेय किसी को जाता है, नरेंद्र भाई मोदी।
7: महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक खाना पकाने के लिए लकड़ी, घास फूस और अन्य पारंपरिक ईंधनों का उपयोग किया जाता रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और वनों पर भी दबाव बढ़ता था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। उज्ज्वला योजना ने हिमाचल प्रदेश में धुआं मुक्त रसोई, महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण, समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश भर की करोड़ों गृहिणियां उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सी महिलाएं उज्ज्वला योजना द्वारा लाभान्वित हैं।
8: आइए सुने उज्ज्वला योजना द्वारा लाभान्वित महिलाओं के विचार।
9: मेरा नाम सीमा देवी है, मैं जिला किन्नौर कल्पा गांव की रहने वाली हूं। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला। खाना बनाने के लिए लकड़ी और पारंपरिक चूल्हे का सहारा लेना पड़ता था, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब गैस कनेक्शन मिलने से रसोई का काम आसान हो गया है और धुएं से भी राहत मिली है, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: मैं नीलम कुमारी गांव दंगड़ी जिला हमीरपुर की रहने वाली हूँ। जब से मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिला है, मुझे काफी फायदा हुआ। जैसे पहले जंगल से लकड़ी लाके खाना बनाना पड़ता था, उससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अपने परिवार को भी टाइम दे पाते थे। और जब से उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन मिला, तब से अपने परिवार को भी टाइम दे पाते हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
2: नाम अंशु वाला है, मैं कुल्लू शहर के सरवरी में रहती हूँ। उज्ज्वला योजना के तहत मुझे मोदी जी ने गैस दी थी, जिसका उपयोग मैं अभी भी कर रही हूँ। कोरोना टाइम में हमें ये गैस मिली, जिसका उपयोग हम अभी तक कर रहे हैं। हम इसके लिए मोदी जी और केंद्रीय सरकार के लिए धन्यवाद करते हैं।
3: सर, जल जीवन मिशन और पीएम किसान जैसी योजनाओं ने हिमाचल के ग्रामीण परिवारों को जीवन किस तरह बदला है?
4: जीवन नहीं बदला, कायाकल्प कर दिया है
3: जी।
4: किसान सम्मान निधि, हर किसान को जो एलिजिबल किसान है, जिसको इसकी जरूरत है, 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है। और मैंने कहा कि किसान सम्मान निधि, ये किसान का सम्मान किया है। देश के प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के किसानों को ये संदेश दिया है कि किसी भी विपता की घड़ी में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, हम लोग तो वर्षा पर निर्भर है, सिंचाई कितने साधन नहीं है, पहाड़ी प्रदेश है, हम वर्षा के ऊपर निर्भर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के किसान को कहा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ खड़ा है
3: जी सर।
4: यदि कोई विपत्ति आती है तो आप उस निधि से बीज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक सम्मान है किसान का, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने किया।
5: महोदय, हिमाचल प्रदेश एक कृषि एवं बागवानी प्रधान राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनकी आय को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। हिमाचल प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक होने के कारण यह योजना उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुई है। इससे किसानों को कृषि निवेश, बीज, उर्वरक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कृषि विकास, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है और हिमाचल प्रदेश के किसान भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। आइए सुने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा लाभान्वित किसान भाइयों के विचार।
6: मेरा नाम पवन कुमार है, मैं चंबा जिला के रहने वाला हूँ। मोदी जी ने 2,000 रुपए हमारे खाते में डाला हुआ है, वो उससे हमने बीज लिए है, खेतों में बोया है, खेतों में काम कर रहे हैं और बहुत धन्यवाद मोदी जी का।
7: मेरा नाम रंगीला है, चंबा रहने वाला हूँ। जरा खेती बाड़ी का 2,000 रुपये मोदी ने पाया तो मेरे खाते में पड़ी है, मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
8: मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के तहत अर्की उपमंडल के एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूं और कृषि ही हमारे परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। पिछले 5.5 सालों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की राशि नियमित रूप से मेरे खाते में पहुँच रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये राशि हमारे कृषि कार्यों जैसे खेतीबाड़ी के जो उपकरण हैं, इसके अलावा खाद है, बीज है, उसको लेने में मददगार साबित हो रही है।
9: मेरा नाम हरीश कुमार, मैं मांगू गांव का रहने वाला हूं। पिछले लगभग 6 वर्षों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है। यह राशि समय समय पर सीधे मेरे खाते में आती है, जिससे खेतीबाड़ी के कार्यों में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ।
10: मेरा नाम श्यामलाल है, गांव बातल से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है। मुझे पिछले 6 वर्षों से इस योजना का लाभ मिल रहा है और इससे खेती के लिए बीज, खाद व अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: अगर हम बात करते हैं सड़कों की, राष्ट्रीय राजमार्गों, सुरंगों और कनेक्टिविटी पे काफी निवेश हुआ है, इससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई दिशा मिली है क्या?
4: डेफिनेटली, निसंदेह। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप छोटा सा हिमाचल प्रदेश है, छोटा सा हिमाचल प्रदेश है। मैंने कहा ना कि नरेंद्र भाई मोदी ने हिमाचल प्रदेश का

0: एक एक कोना अपने पांव से ना पाए, हिमाचल प्रदेश की दुश्वारियां क्या हैं, हिमाचल प्रदेश को क्या जरूरत है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और उनमें से उनको लगा कि सड़कों का काम होना चाहिए, क्योंकि जब जब हमारी सरकारें आई है, चाहे जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई थी, श्रद्धेय शांता कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने सड़कों का काम शुरू किया था, उस समय उन्होंने अपने प्रदेश की बहनों के सिर से घड़ा उठाया था, आज उनको पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल, छोटा सा प्रदेश, तीन तीन फोर लेन का काम चल रहा है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोई अंदाजा लगा सकता था? टनल्स बन रही हैं, और उससे आप एक अंदाजा लगाइए, क्योंकि जो मैं अगर अपने ही लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र, कांगड़ा और जिला चंबा दो जिले मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं
1: जी।
0: और पर्यटन की दृष्टि से इतना खूबसूरत लोकसभा क्षेत्र कहीं है भी नहीं, लेकिन क्या जरूरत है? कनेक्टिविटी की जरूरत है
1: जी।
0: क्या जरूरत है? हवाई सेवाओं की जरूरत है। क्या जरूरत है? रेल की जरूरत है, और उस दिशा में जोर से काम हो रहे हैं। अब पठानकोट मंडी फोर लेन का काम करीब करीब 80% पूरा हो चुका है, आने वाले एक वर्ष में बिल्कुल सुचारू हो जाएगा। लोकसभा में ट्रेन की ब्रॉडगेज करने की लड़ाई में लड़ रहा हूं बार बार, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं, क्योंकि जो स्टडीज हैं, जो मैंने भी अलग अलग जर्नल्स में पढ़ के, अलग अलग गूगल में सर्च करके देखा है, टूरिस्ट कहां जाता है? टूरिस्ट वहां जाता है जहां रेल जाती है। टूरिस्ट अपनी गाड़ी में जाना पसंद नहीं करता, टूरिस्ट बस में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि रेल में हर सुविधा होती है। आंख बंद करके अपने डेस्टिनेशन से बैठ जाओ, जहां आपने पहुंचना है आंख बंद करके आप पहुंच जाएंगे, और हर सुविधा ट्रेन के अंदर उपलब्ध होती है। इसके लिए कोशिश की जा रही है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उसके बड़े सुखद परिणाम आने वाले समय में हमें मिलेंगे, ऐसे विश्वास दिला सकता हूं आपको। तो कनेक्टिविटी इस क्षेत्र की, हिमाचल प्रदेश की जो पर्यटन है, मेरा तो ये मानना है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का भला यदि कोई क्षेत्र कर सकता है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र सुदृढ़ कर सकता है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकता है, वो केवल पर्यटन का क्षेत्र है, और उसमें कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, उसमें बड़े जोर से काम चल रहा है।
2: जी जी, पर्यटन की आपने बात की है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से हिमाचल के शक्तिपीठों और अन्य तीर्थ स्थलों को क्या लाभ मिला है?
0: देखिए, हिमाचल देवभूमि है, शिव भूमि है, और चार चार देवियां इस क्षेत्र में है, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वालामुखी, माँ ब्रजेश्वरी, माँ चमुंडा, माँ बगलामुखी। अगर चंबा की तरफ चले जाए तो लक्ष्मी नारायण, भलई माता, और साथ में देखिए तो हिज होलीनेस दलाई लामा यहाँ हमारे लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। तो इसके लिए एक कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम जैसे आप धार्मिक सर्किट बनाने की आवश्यकता है, अंब तक हमारी वंदे भारत आती है, अंब और माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला, कांगड़ा, ब्रजेश्वरी, चामुंडा और बगलामुखी और चंबा, इसके बीच में केवल एक पहाड़ है, उस पहाड़ को काट कर वंदे भारत इन देवियों के चरणों में भी आ सकती है। इससे क्या होगा, एक धार्मिक सर्किट बनेगा, चिंतपूर्णी से शुरू होकर चंबा, चंबा से वहां से एक टनल का प्रपोजल है, वहां से सीधे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति से सीधे मनाली। तो एक सर्किट, कम से कम टूरिस्ट जो है 10 दिन तक मेरे लोकसभा क्षेत्र में रुक सकता है। तो इसलिए इसकी भी कोशिश की जा रही है, और ये प्रधानमंत्री जी का तो एक विजन है, मतलब हिमाचल प्रदेश को फल राज्य तो है, पर्यटन राज्य बनाने की दिशा की ओर भी अग्रसर है, और उसको बड़ी जोरदार से लड़ाई लड़ी जा रही है।
2: जी, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के कारण आज दूरस्थ गांवों तक डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं तो ये कह सकता हूं कि ये एक अकल्पनीय कार्य है, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और मैं कोट करना चाहता हूं, देश के एक वित्त मंत्री हुए हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि डिजिटल इंडिया हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पढ़े लिखे लोग कम है, गरीबी अधिक है, तो किस तरह से डिजिटल इंडिया होगा, टैक्स से भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, भारतवर्ष डिजिटल इंडिया क्षेत्र में लीड कर रहा है। आज आप चले जाएं, यहां देख लीजिए, छोटे छोटे गांव में जाके देख लीजिए, धर्मशाला तो एक शहर है, आप छोटे छोटे गांव में जाके सर्वे कर लीजिए,
1: जी
0: ठेले वाला भी स्कैनर लेके बैठा है, आप स्कैन करिए, अपनी पेमेंट करिए। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये कायाकल्प है इस देश का ही।

0: हिमाचल प्रदेश का, जहां पूर्ववर्ती सरकारें कहती थी ये संभव ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते, देश में तो किया, वर्ल्ड लीडर बन गए। एआई समिट, क्या कभी इस देश में कल्पना की जा सकती थी कि विश्व का एआई समिट दिल्ली भारत मंडपम में होगा? अभी हाल ही में हुआ है। विश्व में भारत की साख कहां पहुंच गई? डिजिटल इंडिया में, इंडिया जो है वो डिजिटल क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, और एआई जो आज की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले समय में आप देखेंगे, अभी से आप देख रहे हैं, और आने वाले समय में देखेंगे इस क्षेत्र में कितनी उन्नति होगी, और उसमें भी भारत लीड कर रहा है। पूरे विश्व के एआई एक्सपर्ट्स का समिट दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने करवा दिया, तो ये आने वाले समय में बदलते भारत की तस्वीर है।
1: अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
0: ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। इस दृष्टि से लोन, सस्ता लोन देकर नौजवान खड़ा हो, वो जॉब सीकर ना हो, जॉब क्रिएटर बने, वो अपना स्टार्टअप शुरू करके 10 और लोगों को नौकरी दे, ताकि 10 और परिवार उसके जिम्मे लगे, उनको पालने वाला बने, पालक बने, जॉब क्रिएटर बने। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया योजनाएं, और उसमें मैं देखता हूं कि कितने यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं अब तो। पूर्ववर्ती सरकारों में दशकों में उसकी वो थी, 2 यूनिकॉर्न, 4 यूनिकॉर्न्स, आज हजारों में यूनिकॉर्न्स अगर बने हैं, तो ये पिछले 12 वर्षों की मेहनत है नरेंद्र भाई मोदी जी की, हिमाचल प्रदेश में भी और विश्व में भी, देश में भी। तो ये योजना आने वाले समय में एक क्रांतिकारी कदम लेकर आएगी, और मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा है देश के प्रधानमंत्री ने, उस लक्ष्य में ये जो जो योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, वो सीढ़ी का काम करेंगे, दैट विल बी स्टेप लैडर्स इन कमिंग टाइम्स।
1: जी, अगर हम बात करते हैं स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को नई पहचान मिली है, तो इसमें हिमाचल के बागवानी और स्थानीय उत्पादों को क्या नया अवसर मिला है?
0: देखिए, हमारा प्रदेश फल राज्य है, और लोकल उत्पाद की जहां तक आपने बात की, अगर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, चंबा में जाइए आप, चंबा का थाल, चंबा का रुमाल, चंबा की संस्कृति, और उसके ब्रांड एम्बेसडर देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसराइल में जब देश के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री को जो उपहार दिया था, वो हिमाचल की टोपी थी, और चंबा का थाल था, और चंबा का रुमाल था।
1: जी,
0: और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी एक बहन पद्मश्री चंबा के रुमाल के कारण है, हमारे एक भाई पद्मश्री विजय शर्मा, जो हमारी कांगड़ा पेंटिंग है, चंबा की पेंटिंग है, उसके कारण पद्मश्री अवार्डी है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के उत्पादों को बढ़ाने के लिए मार्केट की आवश्यकता है, और उसके लिए कोशिश की जा रही है। जैसे मैं सांसद हूँ, मेरा बहुत अधिक थ्रस्ट इस बात पे होता है, हमने पीछे एक निर्णय किया है, जितने हमारे उत्पाद हैं, चाहे वो कांगड़ा में हमारे नौजवान कुछ कर रहे हैं, या चंबा में कुछ कर रहे हैं, शहद है चंबा का, चंबा की जरीस है, चंबा की चुक है, ये वहाँ के लोकल उत्पाद हैं, उनको कैसे मार्केट दी जाए? कांगड़ा के उत्पाद हैं, हमारे जो चीड़ के जो चिला वो होते हैं, उससे के कुछ बनता है? पीछे इसकी प्रदर्शनी लगी थी यहाँ वॉर मेमोरियल में, मैं तो देख के हैरान हो गया। तो उसके लिए मैंने एक निर्णय किया था, मैंने जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसकी जो कमेटी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ, तो मैंने वहाँ आदेश किए थे कि हमारा जो एयरपोर्ट है, वहाँ इनको बूथ उपलब्ध करवाया जाए, तो वह किया गया वहाँ, ताकि देश विदेश के जो पर्यटक आते हैं, वो हमारे उत्पादों को देखें, समझें, उनको खरीदें, एंड दे आर द रियल ब्रांड एम्बेसडर्स। तो इसके लिए भी कोशिश की जा रही है।
2: माननीय सांसद महोदय, केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग, इन सभी वर्गों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपको कौन सी योजनाएं सबसे अधिक परिवर्तनकारी लगती हैं और क्यों?
0: मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना, इटली देश की जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बराबर देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर गरीबों को दिए, पक्की छत दी है, और ये सफर जारी है, लंबे समय तक चलेगा।
2: हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ अनेक परिवार भौगोलिक कठिनाइयों और सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण सुरक्षित और पक्के आवास से वंचित रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक

0: महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना के रूप में उभरी है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। हिमाचल प्रदेश में योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवारों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। हाल के वर्षों में राज्य के लिए बड़ी संख्या में नए आवासों को स्वीकृति मिली है, जिससे आवासहीन परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल आवास की समस्या का समाधान करती है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छता और ग्रामीण एवं शहरी विकास को भी बढ़ावा देती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार जो बेघर थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे परिवारों को अपना घर मिल चुका है और आज उनकी खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आइए सुने प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा लाभान्वित कुछ परिवारों के विचार।
1: मेरा नाम शकुंतला कुमारी है, मेरे पति का नाम श्री विकास कुमार है। हमारे हम कच्चे मकान में रह रहे थे, कच्चे घर, कच्ची छत थी, बारिश में पानी अंदर आ जाता था, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती थी, बच्चों को बहुत तकलीफ होती थी। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम आई है, तो वहाँ पर गए, उन्होंने हमारे माम को घर डालने के लिए पैसे दिए। हम कच्चे मकानों में रह रहे थे, फिर हम उनसे उनके पैसे से घर बनाए, पक्के मकान बनाए थे, आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री और उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पक्के मकान दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये स्कीम चलाई है, वह गरीबों के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो हमने इसका लाभ उठाया, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पक्के मकान दिए।
2: ये योजना है, ये मैं ये कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में, देश के प्रधानमंत्री तुष्टिकरण नहीं करते, सशक्तिकरण करते हैं। अपीसमेंट नहीं है, एम्पावरमेंट है। महिलाओं को सेल्फ सफिशिएंट, सक्षम बनाने के लिए लखपति दीदी, अब तो ड्रोन दीदी भी बनाई जा रही है, क्योंकि ड्रोन का जमाना है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश की नारी शक्ति के लिए, देश के किसान के लिए, देश के गरीब के लिए। देखिए, जब कोरोना काल आया था, सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरा विश्व तहस नहस हो गया, भारत खड़ा हो गया एक स्थान पर, आवागमन बंद, व्यापार बंद, काम धंधे बंद, सरकारी कार्यालय बंद, कोई कुछ काम नहीं हो रहा था। उस समय देखिए, देश के प्रधानमंत्री को गरीब की चिंता थी। जो अमीर हैं वो तो खा सकते हैं, उनके पास इतना सरमाया होता है, लेकिन गरीब क्या करेगा जो सुबह दिहाड़ी लगाता है और शाम को रोटी खाता है। देश तो बंद हो चुका था। गरीब कल्याण प्रधानमंत्री, गरीब कल्याण अन्न योजना, 50 करोड़ गरीबों को घर में 10 किलो अनाज पहुंचाया देश के प्रधानमंत्री, वो अभी तक भी चल रहा है। अब 80 करोड़ गरीब उसका लाभ ले रहे हैं। ये योजना, ये क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये कोई राजनीतिक कदम नहीं था, ये उस गरीब की चिंता थी जिसको सुबह कमा के रात को रोटी खानी है, अगर काम धंधा नहीं होगा तो कहां से खाएगा, कैसे कैसे पेट पालेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ गरीबों को आज भी प्रधानमंत्री इस योजना के तहत अन्न दे रहे हैं।
0: जी, भविष्य की बात करते हैं, विकसित भारत 2047, इस लक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की क्या भूमिका होगी, प्रदेश किन क्षेत्रों में राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकता है?
2: मुझे लगता है कि जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस देश के 140 करोड़ जनता के दम पर दिया है। और मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है 1 लाख युवा आगे आए, निस्वार्थ हों, नेशन फर्स्ट की भावना से काम करने वाले हो। और केवल ये नहीं कि जो उनके जिस दल के वो प्रधानमंत्री उस दल के हों, हर जितने राजनीतिक दल हैं इस देश में, उन राजनीतिक दलों से युवा निकलें और आगे बढ़ें, निस्वार्थ होकर, नेशन फर्स्ट की भावना लेकर, क्योंकि उनका मानना है देश को 2047 में यदि विकसित राष्ट्र बनाना है, उस काम के जो ध्वजवाहक होंगे उस देश के युवा होंगे। और जितने मुद्रा योजना, मैंने कहा गरीब कल्याण योजना, मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, और जितनी योजनाएं हैं, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, वो समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण, और सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया, उससे भी बड़ा एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, जो लक्ष्य है, उसको आगे बढ़ने के लिए 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये सब

0: सबसे बड़ा हथियार होगा, आने वाले समय में ये काम होगा।
1: माननीय सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आपने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विभिन्न योजनाओं, हिमाचल प्रदेश के विकास, जन कल्याणकारी पहलों तथा भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। इसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष श्रृंखला। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर डॉक्टर राजीव भारद्वाज लोकसभा सांसद से विशेष भेंटवार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी धर्मशाला। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
3: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा।

0: जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
3: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
2: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण बारहवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
3: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
2: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
3: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। FM शिमला पर अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आगाज करेंगे आशिकी फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है कुमार शानू ने, मदन पाल के बोल है और नदीम श्रवण का संगीत।

0: स्वागत है आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ है आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लेकिन फिल्म का ये गीत आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

103.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आपको सुनवाएंगे दामिनी फिल्म का ये गीत, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

दामिनी फिल्म के इस गीत के साथ आज एक फिल्म संगीत में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। 8:45 होने को हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, समाचार संध्या और न्यूज़ @9 के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक

0: दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में

0: भी तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकार

0: कटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
5: We have been able to achieve that in the first.
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: They are all designed in India now.
4: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी

0: संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम और आज की फिल्म है पेइंग गेस्ट। इस फिल्म के कलाकारों की बात करें तो इस फिल्म में देव आनंद ने रमेश कुमार एक वकील का किरदार निभाया है, नूतन ने शांति का, शुभा खोटे ने चंचल का और बैरिस्टर दयाल के रूप में गजानंद जागीरदार ने अभिनय किया है। सज्जन दुलारी और याकूब ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। फिल्म का संगीत एसटी वर्मन ने तैयार किया है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और ये फिल्म जो है वो मुखर्जी, हुसैन, देवानंद और एसटी वर्मन की जोड़ी की दूसरी हिट फिल्म थी, जिन्होंने जो है वो इससे पहले मुनीम जी फिल्म बनाने का जो है वो एक साथ काम किया है, यानी एक साथ इन्होंने ये तीनों ने ये फिल्म बनाई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म का एक और गीत, इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाश वाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम और आज की फिल्म है पेइंग गेस्ट। फिल्म की कहानी की बात करें तो रमेश यानी देव आनंद एक बेरोजगार और संघर्षरत वकील हैं। मकान मालिक द्वारा बार बार घर से निकाले जाने के बाद वह शांति यानी नूतन के घर पर एक बार फिर से पेइंग गेस्ट बन जाते हैं। जी हाँ, और फिर रमेश और शांति एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन कहानी में मोड़ आता है। शांति के पिता अपने एक और शराबी और भ्रष्ट दामाद से परेशान रहते हैं। एक दिन बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शांति के पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद शांति के जीवन में कई चुनौतियां आती हैं और इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया ये गीत फिल्म पेइंग गेस्ट से।
1: निगाहें मस्ताना देख समा

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाश वाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप और स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी फिल्म शिमला पर ये समय है आपके दिल की आवाज़ सुनने का। जी हाँ, कार्यक्रम है ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ पे सुन। हमारा ईमेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। ईमेल कीजिए, सुनिए अपनी पसंद के गीत अपनी पसंद की फिल्म से।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए आपके ईमेल्स को पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने हमें ईमेल किया है और तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है कार्यक्रम में और हमें जो है वो अपनी ग्रीटिंग्स लिखकर भेजी है। गट गई टिकरी छारा छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवागन, श्रीमती कजरी बाई देवागन, दीपक कुमार देवागन, श्रीमती जयश्री देवागन, ऋषभ ऋचा देवागन ने हमें ईमेल किया है, सुनना चाहा है धर्मात्मा फिल्म का कोई भी गीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। छत्रपति संभा

नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश का ईमेल आया है। सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत? डोरेवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता कुमार, प्रियंका धांधी, प्रकाश धांधी और प्रियम, बेबी वामिका, वाणी धांधी ने हमें ईमेल लिखकर भेजा है कार्यक्रम में। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबू भी मुलानी, बादशाह मुलानी, ये पूरा मुलानी परिवार हमें ईमेल कर रहा है। और इन्होंने अपना ईमेल का स्थान लिखा है मुकाम पोस्ट फुल चिचोली तालुका पंढरपुर से हमें इन्होंने ईमेल किया है। नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान ने हमें वर्ली मुंबई से ईमेल किया है। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, आलौकिक का ईमेल आया है। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा ने ईमेल किया है। खैल बाजार पानीपत से नरेंद्र मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, गोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का का ईमेल आया है पानीपत से। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। पद्मा टाकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह ने ईमेल लिखकर भेजा है। गुनौर से आदिल कमर तस्दीक अली, मुजफ्फर अली का ईमेल आया है कार्यक्रम में और इन्होंने हमें जो है वो अपना ईमेल लिखकर भेजा है। सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित का ईमेल आया है। जलालाबाद वेस्ट से ही हमें राम राम लिखकर भेज रहे हैं। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाम दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी का ईमेल कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। और आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने इस गीत को गाया है। ये गीत है फिल्म तीसरी मंजिल से।

103.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप और फिल्म शिमला पर सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम म्यूजिक मेल। KR साहू, आकाश, कमलेश, गुन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्रिय, भाटापारा देवरी से हमें ईमेल कर रहे हैं, सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत। गजडूर द्वारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का ईमेल आया है। नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान का वर्ली मुंबई से इन्होंने हमें ईमेल किया है। पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुमार ये हमें ईमेल कर रहे हैं कुभार गली कोलग्राम से। राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे,

ये हमें ईमेल कर रहे हैं और इनके साथ है शेर गांव से संतोष एस काले, गजानन सालोकर, सुरेश भी से पाटिल और माने वाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, ये हमें ईमेल कर रहे हैं सभी मिलकर। और जी आर पॉल, पूरा पॉल परिवार, ये हमें जालंधर पंजाब से ईमेल कर रहे हैं और सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत। पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर सिंह, सीता और गीता, गांव नथाना पंजाब से इन्होंने हमें ईमेल किया है। श्री कृष्णा भाटे का ईमेल आया है कार्यक्रम में और इनके साथ हैं संदीप भाटे, अमूल्य भांटे और ये हमें नाथुरा महाराष्ट्र से ईमेल कर रहे हैं। 103.7 MHz आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम म्यूजिक मेल। जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, कमरजीत का ईमेल आया है, सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, राजदा रानी, हिना कौसर का ईमेल कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। संतोष राजपूत, हेम प्रभा, पूर्वी गौरव राजपूत का छत्तीसगढ़ से ईमेल आया है। गुगनी राम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत, ये हमें कबीर धाम छत्तीसगढ़ से ईमेल कर रहे हैं। 103.7 MHz आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का ईमेल आया है और ये हमें ईमेल लिखा है सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, शशि बाला, संदीप भुगनानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इसप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, विपाशा शर्मा, सोनिया, कालका जग्गी दुआ और इन्होंने हमें राम राम लिखकर भेजा है और करनाल से इन्होंने हमें ये ईमेल लिखकर भेजा है। नई बस्ती से मोहम्मद आसिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद कलीम हाशमी का ईमेल आया है। 103.7 MHz के साथ हैं आप। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंबा साहू का ईमेल आया है। प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार का ईमेल कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। ये इन्होंने हमें मेन रोल तिलहारा से ये ईमेल इन्होंने लिखकर भेजा है। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, यासीन हाशमी और शमशुल कमर राही का ईमेल आया है कार्यक्रम में। आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने।

103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप और सुन रहे हैं ईमेल बेस्ड प्रोग्राम म्यूजिक मेल। एकता कॉलोनी रोहतक से हमें ईमेल आया है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध का, सिद्धार्थ नगर, दयापुर, बावली से गजाना नेले, विश्वदीप एले, शेरी वडनेर, अकोला से आदित्य दामोदर, अरुणा दामोदर का, सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत। जी हाँ, ये ईमेल हमें लिखकर भेजा है बीकानेर राजस्थान से रानी और बिट्टू झाप ने, और इन्होंने एक बहुत से गानों की एक लिस्ट लिखकर भेजी है। कृपया आप हमें एक फिल्म से एक ही गाना लिखकर ज़रूर भेजें। मेरठ से ये हमें ईमेल कर रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पॉल डिक्रेस्टो, विली डिक्रेस्टो का ईमेल आया है। पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवानशी खेड़ा, और इन्होंने हमें ईमेल लिखकर भेजा है पंजाब से। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिमा हबीबी का ईमेल आया है उत्तर प्रदेश पटियाला रोड से, ये हमें ईमेल कर रहे हैं। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाह बेगम मरियम जैनब का ईमेल आया है, ये हमें ईमेल कर रहे हैं। जी हाँ, कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पूनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा और अविका का ईमेल आया है, सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत।

पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, शाहिना शर्मा और मैडी शर्मा का ईमेल आया है, सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत कार्यक्रम में। इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालंद्री लहरे का ईमेल आया है, चिरमरी कुरासिया कालरी से ये हमें ईमेल लिखकर भेज रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीता राम, बबीता, निखिल और तन्वी बोध, कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम का ईमेल आया है, सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई गुड़ाने, हीरामन प्रणय और प्रतिभा ताई गुड़ाने का ईमेल आया है, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये हमें लिख रहे हैं। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है इन्होंने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू का ईमेल आया है, कोई भी गीत

और प्रतिभा ताई गुड़ाने का ईमेल आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। यहाँ में लिख रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है इन्होंने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू का ईमेल आया है कोई भी गीत सुनना चाहा है इन्होंने हमारी पसंद से कार्यक्रम में। शबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्तान रानी, नंदिनी और अंजलि कृष्ण की नगरी यानी मथुरा से ये हमें ईमेल कर रहे हैं। कस्बा बिलराव से इरशाद अहमद शाह और सबा अंसारी का ईमेल आया है हमें मथुरा से, इन्होंने ईमेल किया है। हसीना बी मंसूरी, अबीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी का ईमेल पालंदा नाका इंदौर मध्य प्रदेश से ये हमें ईमेल कर रहे हैं।

संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमें ईमेल कर रहे हैं और हमारे प्रोग्राम पेश करने की जो है इन्होंने तारीफ लिखकर भेजी है, उसके लिए इनका शुक्रिया। अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, रिचा शर्मा, दर्पण शर्मा, लव शर्मा, नैन्सी शर्मा, गुड्डू शर्मा, सुनाम पंजाब से हमें ईमेल कर रहे हैं। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। हनुमानगढ़ फाजिल्का से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ने हमें ईमेल किया है, सुनना चाहा है हमारी पसंद का कोई भी गीत। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का ईमेल आया है। आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं 1942 लव स्टोरी फिल्म का ये गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ आज ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ है यहाँ स्टूडियो की घड़ी में 10 बज चुके हैं दोस्तों, और एफएम शिमला पर ये समय रहता है गज़लों पर आधारित कार्यक्रम का। जी हाँ, जो कभी अल्फाज बनकर गज़ल में ढल जाते हैं तो कभी सुर बनकर दिलों में उतर जाते हैं। गज़ल एक ऐसी कला है जहाँ मोहब्बत भी है, तन्हाई भी, यादें भी और ज़िंदगी की सच्चाई भी।

किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर बात पे कहते हो कि तुम कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जी हाँ, आइए अब आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की गाई ये गज़ल।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आनंद ले रहे हैं गज़लों पर आधारित कार्यक्रम का। वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत गज़ल कि दिल सचमुच कुछ देर के लिए ठहर सा गया। गज़ल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और अभी अभी हमने उसी एहसास को जिया है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। अब आपको सुनवाएंगे चंदन दास की गाई ये गज़ल।

अल्फाज और सुर मिलकर दिल की किताब के नए बन्ने खोलते जाते हैं, जो मोहब्बत की नरमी और जुदाई की कसक दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। मोहब्बत अगर आवाज़ बन जाए तो शायद वो गज़ल कहलाती है। तेरे आने की खबर जब महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जी हाँ, इन्हीं एहसासों के साथ आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गज़ल। इसे लिखा है जैन निसार अख्तर ने। लता मंगेशकर ने गाया है इस गज़ल को।

इसी के साथ गज़लों पर आधारित कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ है आप।

103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। सुरों की खुशबू, यादों का कारवां और दिल को छू लेने वाले सदाबहार नगमे। जी हाँ, 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप और FM शिमला पर ये समय है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। जी हाँ, वो गीत जो सिर्फ गीत नहीं बल्कि हमारी यादों का हिस्सा है, कभी बचपन की गलियों में ले जाते हैं तो कभी पुराने प्यार की याद दिला देते हैं। जी हाँ, कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, वो हर दौर में दिलों के करीब होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सुनहरे सफ़र को। सफ़र फिल्म के ही इस गीत के साथ इसे गाया है मन्ना डे ने। इंदिवर की बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

सच्चा झूठा इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। सचमुच पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है। इनमें शब्द भी दिल से निकलते हैं और धुन भी सीधे दिल तक पहुँचती है। पुराने गीतों का जादू कभी कम नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये और भी करीब आ जाते हैं। जी हाँ, कटी पतंग फिल्म का ये गीत अब आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी की बोल और आर डी वर्मन का संगीत।

हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और आर डी वर्मन का संगीत। मोहब्बत और संगीत का रिश्ता बहुत पुराना है।

अंदाज फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

रात चांदनी और पुराने गीत, जी हाँ, इनका साथ हमेशा दिल को सुकून देता है। ऐसा लगता है कि हर दिन कोई कहानी सुना रही हो। अब आपको सुनवाएंगे कारवां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरूह के बोल और आर डी वर्मन का संगीत।

इन्हीं गीतों के साथ आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। ग्यारह बजने को हैं, अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश

करके 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।